मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ान AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। आज सोमवार है। शक्सवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून 2026, 5:57 होने वाले हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, शुभारंभ मातृ वंदना से।

लक्ष्मी शंकर के स्वर में ये थी प्रेम धवन की देशभक्तिपूर्ण रचना। आइए अब सुनते हैं असित देसाई के स्वर में ये रचना।

असित देसाई और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आइए अब सुनते हैं कविता मठरानी के स्वर में शीला झा की ये रचना।

0: कविता मठरानी के स्वर में ये थी शीला झा की रचना। आइए अब सुनते हैं सुरेश वाडकर के स्वर में संत कबीरदास का ये भक्ति पद।
1: कबीर फॉट सुपरस्टिशंस एंड ब्लाइंड फेथ ऑल हिज लाइफ। हाफ ऑफ द फ्लावर्स वेंट टू द राजा ऑफ बनारस एंड अवधूत एंड प्लेस्ड द

सुरेश वाड्रा के स्वर में ये था संत कबीरदास का भक्तिपद। आइए अब सुनते हैं उषा टंडन के स्वर में ये भक्तिपद।

0: उषा टंडन के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। इसके साथ ही अब आज की वंदना संपन्न होती है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख श्री दानी प्रसाद शर्मा का है।
1: व्यक्ति अपने अर्जित गुणों के आधार पर समाज में सम्मान पाने का अधिकारी होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि हर व्यक्ति समाज में समान रूप से सम्मान नहीं पा सकता। वस्तुतः सामाजिक प्रतिष्ठा जो उन्हें प्राप्त है, उसके पीछे उनका अपना व्यक्तित्व और उनके सत्कर्म होते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना प्रभावी और उसके सत्कर्म जितने अनुकरणीय होते हैं, वो समाज में उतना ही पूजनीय होता है। यूं तो व्यक्तित्व व्यक्ति में सन्निहित सद्गुणों का द्योतक है। तदनुसार व्यक्ति में सद्गुणों की जितनी अधिकता होती है, वो व्यक्तित्व उतना ही धनी होता है और समाज में उतना ही अधिक आदर पाने का पात्र होता है। इस तरह वे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में सद्गुणों को अधिक से अधिक स्थान दिया, मानो उन्होंने अपनी सद्गति ही बना ली। इस दृष्टि से जीवन जीना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु हमें ये देखना है कि हम जीवन कैसे जी रहे हैं। हिंसा के माध्यम से या झूठ बोलकर अथवा सच्चरित्र के पथ पर चलकर। जीवन की सार्थकता तो तभी है जब हम अपने जीवन स्तर को अधिक से अधिक समुन्नत बनाएं। जीवन मूल्यों को बढ़ाने वाले सद्गुणों से ही व्यक्तित्व का विकास होता है। क्षमा, दया, समता, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, सहनशीलता आदि ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। इसके विपरीत घृणा, द्वेष, क्रोध, स्वार्थपरक भावना, मोह, लोभ, अहंकार आदि दुर्गुण व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। समाज में उन्हीं व्यक्तियों को आदर मिला करते हैं जो व्यक्तित्व के धनी होते हैं, जबकि व्यक्तित्व के अभाव में व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखा जाता है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम में सद्गुणों का अधिक से अधिक विकास हो और दुर्गुणों का अधिक से अधिक ह्रास हो। प्रायः लोग स्वयं में दुर्गुणों को समेटे हुए अपनी संतान में सद्गुणों के विकास की आकांक्षा रखते हैं, जो कि पूर्णतः असंभव है। अगर हम अपनी संतानों में अच्छे गुणों का विकास देखना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में भी सद्गुणों का विकास करना होगा। बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं, वो उसी के अनुरूप ढल जाते हैं। अतः हमें न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा, वरन समाज के लोगों के व्यक्तित्व के बारे में भी चिंता करनी होगी। हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि हमारी संतान किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं है। ये तो सर्वविदित है कि बचपन से ही बच्चों के व्यक्तित्व के विकास का दायित्व माता पिता पर होता है। अगर माता पिता सद्गुणों के विकास की नींव अपनी संतान में रख देते हैं, तो आशानुरूप व्यक्तित्व के भवन बनते देर नहीं लगती। हाँ, आगे दिशा निर्देश की जरूरत अवश्य पड़ती है। इस तरह जीवन मूल्यों के विकास से ही व्यक्तित्व का विकास संभव है। साथ ही जीवन मूल्यों का विकास समूचे समाज में हो, तो वो समाज दूसरों के लिए आदर्श बन

0: उठाता है और वही समाज दूसरों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। वैसे भी जिस समाज में समाज सुधारक अथवा सज्जन अधिक रहते हैं, उस समाज में बुराइयों का प्रादुर्भाव असंभव है। अतः हम सबका दायित्व है कि समाज को समुन्नत बनाने के लिए समाज के हर व्यक्ति के जीवन मूल्यों का समुचित विकास किया जाए।
1: ये था चिंतन, आलेख श्री दानी प्रसाद शर्मा का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान, मुख्य सुर सुरेश वाडकर और वाणी जयराम का है। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया। एपिसोड नंबर 201, 201।

भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्यारत हूँ। मुझे श्री राम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

0: अभी आप रामचरित मानस गान सुन रहे थे। मुख्य स्वर सुरेश वाडकर और वाणी जयराम का था। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा, विषय है टमाटर की उन्नत खेती। जानकारी देते हुए डॉक्टर एस एम अली हुमायूं।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टमाटर एक ऐसी फसल है जिसे किसान भाई जो है साल भर लगा रहे हैं, और ये जो फसल है वे पूरे भारत वर्ष में जो है साल भर उगाई जा रही है, क्योंकि इसकी अत्यधिक मात्रा में इसका जो है इसकी डिमांड होती है, मांग होती है, और इसमें जो है बहुत सारे पौष्टिक तत्व भी होते हैं। इस वजह से जो है टमाटर का उपयोग जो है हर प्रकार से किया जाता है, चाहे वो सूप बना करके हो, सब्जी में डालने के लिए हो, या उसका जो है केचप बनाया जाता है। इस तरह से बहुत सारे प्रयोग हैं टमाटर के। तो टमाटर जो एक ऐसी फसल है जो साल भर उगाई जाती है। टमाटर जो एक फसल है वो फसल जलवायु पर बहुत निर्भर करती है। जलवायु इसके लिए प्रमुख रूप से उसके रंग के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है उपयोगी होती है। अगर जलवायु उपयुक्त होती है तो टमाटर की फसल अच्छी होने के साथ साथ उसका रंग और उसका आकार भी जो है वो प्रभावित होता है। टमाटर की फसल को मुख्यतः 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो भी जलवायु क्षेत्र है उस जलवायु क्षेत्र में उगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रायः देखा यह गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर तापमान कम होता है तो फल होता है उसमें जो है लाली कम आती है ना, लाली जो होती है लाल रंग जो टमाटर का होता है लाइकोपीन, वो जो होता है वो कम बनता है। इस वजह से जहां पे बहुत ज्यादा पाला पड़ता हो, ठंड पड़ती हो, उस जगह पे टमाटर की फसल को लेने की सलाह नहीं दी जाती है। और वैसे ही जिस जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, 30 डिग्री ऊपर टेम्परेचर अगर होता है तब भी रंग प्रभावित होता है, और 40 डिग्री के ऊपर तापमान जाने पर कभी कभी तो ये देखा गया है कि टमाटर में जो है लाल रंग आ ही नहीं पाता। तो जलवायु का जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ये फसल पाले के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो पाला या लू जो भी है दोनों चीजों से जो है इस फसल का बचाव करना चाहिए। तो रही बात फसल को उगाने की, तो देखिए सबसे पहले आप मृदा परीक्षण अपना करा लें कि आपकी मृदा जो है उसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, और अगर मृदा परीक्षण नहीं हो पाता है तो फिर उसके हिसाब से जो है आप जो है कुछ और कार्य भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप खेतों की जो है अच्छी से जुताई करके उसके जो है खेत की तैयारी कर लें। फिर खेत की तैयारी जो है आप ये ध्यान रखें कि जो टमाटर को जो है कतार में ही बोएं। कतार में बोने से जो होता है फसल का उत्पादन अच्छा आता है, रोग कीट बीमारी कम लगते हैं। उसके पहले आपको ये भी ध्यान देना है कि जो टमाटर का पौधा है उसके लिए आपको नर्सरी तैयार करनी है। तो आप मान के चलिए कि नर्सरी जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जमीन से उठी हुई 6-7 इंच वो जमीन से उठा हुआ जो है एक बेड बना लें, उसमें जो है आपको टमाटर के बीज बोने हैं, नर्सरी तैयार करनी है ताकि आप उसको जो है रोपित कर सकें। प्रति हेक्टेयर अगर हम बात करें तो उन्नत किस्में होती हैं उसका 400 ग्राम जो होता है वो बीज दर निर्धारित की गई है प्रति हेक्टेयर 400 ग्राम, और हाइब्रिड जो होते हैं संकर किस्में जो होती हैं वो 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है प्रति हेक्टेयर जो है बीज की बुआई की जा सकती है। तो नर्सरी लगाने के लिए आप सबसे पहले ध्यान दें कि नर्सरी में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं, उसमें ध्यान रखें कि दीमक ना हो। कई बार क्या होता है कि जो गोबर की खाद होती है उसमें दीमक की समस्या रहती है, तो दीमक जो है वहां से गोबर की खाद से आपकी क्यारी में आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपकी फसल को जो है जो पौधा आपने तैयार किया है उसको नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो ये आप ध्यान दें कि दीमक उसमें ना हो। उसके बाद आप काम ये कर सकते हैं कि बीज को जो है आप छिड़क के बोएं। छिड़क के बोएं मतलब आपको जो आपने नर्सरी तैयार कर रही है ना, जो आपने जमीन के ऊपर बेड बनाया है जहाँ पे आप नर्सरी तैयार करते हैं वहां पे छिड़क के बोएं। कतार से बोने में क्या होता है, ज्यादातर ये पाया गया, किसान भाई भी ये बताते हैं और हम लोगों ने भी देखा है कि अगर आप कतार से लगाते हैं तो उसमें गलन की समस्या ज्यादा आ जाती है। अगर आप नर्सरी को कतार से लगाते हैं तो आपको मेन फसल को मुख्य खेत में तो कतार से लगाना है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नर्सरी की। ध्यान रखिएगा कि नर्सरी में जो है छिड़क के बोएं। उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा धूप पड़ने वाली है तो ऊपर से जो है थोड़े से गोबर खाद और रेत मिला करके जो है बीजों को ढक देना चाहिए जिससे एकदम से धूप ना पड़े। और अगर ठंड में लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा जहां का तापमान नीचे गिरता है तब भी वहां पर उस जगह पर भी जो है उस तरह का प्रयोग कर सकते हैं जिससे बीज अंकुरण अच्छा हो और फसल को नुकसान ना हो। उसके बाद आप ये ध्यान रखिए कि आपको उसके

0: पौधे को ही उखाड़ करके आपके मुख्य खेत में लगाना है। तो स्वस्थ पौधे कैसे होते हैं कि जो टमाटर में रस चूसा कीट बीमारियां बहुत जल्दी आती हैं, है ना, तो जो पौधे स्वस्थ रहते हैं वही पौधे आगे अगर आप लगाएंगे तो उनकी जड़ें भी स्वस्थ होंगी, जड़ स्वस्थ हैं इस वजह से पौधे स्वस्थ, उन्हें जो आप मुख्य खेत में ही लगाइए। जिस भी पौधे में अगर आपको थोड़ी सी बीमारी या पत्ते जो है ग्रसित दिख रहे हैं कीट या बीमारी से, तो उसे आप निकाल के अलग कर दीजिए, उन्हें आप ना लगाएं। उसके बाद आप ये ध्यान रखें कि पानी का सिंचाई का साधन है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि टमाटर के खेत जो है 15 से 20 दिन में जो है सिंचाई की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो आप ये ध्यान रखें बुआई के तुरंत बाद एक सिंचाई आवश्यक होनी चाहिए, उसके बाद जो है आप 15 से 20 दिन में सिंचाई करें और पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन करके रखें, कतार से कतार की दूरी मेंटेन करके रखें। तो ये कुछ उपाय हैं जिसकी वजह से आप जो है टमाटर की फसल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बाकी फिर कीट नियंत्रण और उसके लिए जो है जैसी समस्याएं आपको आती हैं तो कृषि विज्ञान केंद्रों में या कृषि विभाग में आप संपर्क करके उसका उपाय आप ले सकें। धन्यवाद।
1: टमाटर की उन्नत खेती। कृषि चर्चा में ये जानकारी दी डॉक्टर एस एम अली हुमायूं ने। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। स्पोर्ट्स स्क्रीन कार्यक्रम 8:30 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत सुबह 10:00 सुनिएगा सशक्त भारत पर केंद्रित कार्यक्रम। इसी कार्यक्रम में 9:25 पर सुनिएगा विदेश नीति पर केंद्रित कार्यक्रम। सुरों का सफर पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम 10:00। सुबह 8:30 पर सुनिएगा लोक संगीत। कलाकार होंगे विदुषी ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार और साथी। शायर जनाब अब्दुल जावीद का कविता पाठ सुनिएगा सुबह 9:00। नमस्कार रायपुर सुबह 7:05 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और 8:15 पर सुनिएगा सीमा दत्ता को। और शाम 6:30 पर कलाकार होंगी अमृता नंदी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर सुनिएगा पंडित शिवकुमार शर्मा का संतूर पर बजाए राग सोहनी। फोन कराओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनो। हमारा साप्ताहिक प्रसारण सुनिएगा सुबह 11:05 पर, प्रस्तुति प्रवीणा त्रिपाठी की। लोक रंजनी में पंथी गीत सुनिएगा दोपहर 12:30 पर, कलाकार होंगे देवदास बंजारे और साथी। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया दोपहर 1:30 पर, इसमें महिलाएं आज सुनेंगी आज की बात, वृद्ध जनों का अपमान कानूनी जुर्म, इस विषय पर चर्चा, आपकी चिट्ठी, एक ही कलाकार इसमें सुनेंगी सुमन कल्याणपुर को। इसके अलावा टिप्स, पालतू पशुओं से बच्चों की सुरक्षा, बरसात पूर्व कपड़ों का रख रखाव और कैसे स्वस्थ रखें गमले में लगे पौधे, इस विषय पर चर्चा। शाम 5:10 पर युवाणी में युवा साथी आज सुनेंगे आजकल, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर चर्चा, विज्ञान मंच इसमें सुनिएगा वार्ता एआई की दुनिया, वार्ताकार होंगी अक्षदा मातुरकर। शाम 7:21 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल, इसमें किसान भाई आज सुनेंगे आज की बात, खरीफ फसल में उन्नत बीज के चुनाव, आज की सलाह इसमें विषय होगा मछली पालन और प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रेम कुमार प्रधान, वैज्ञानिक केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी दोपहर 12:00। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट शाम 5:00। चित्रपट संगीत सुबह 9:15, 10:30, दोपहर 1:05, दोपहर 2:00, 2:30, शाम 7:00, 8:00 और 9:15 पर। हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, स्पोर्ट्स स्क्रीन कार्यक्रम 8:30 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 10:00 सुनेगा सशक्त भारत।

0: इस पर केंद्रित कार्यक्रम, और इसी कार्यक्रम में रात 9:25 पर सुनिएगा विदेश नीति पर केंद्रित कार्यक्रम। सुरों का सफर, पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रात 10:00। शायर जनाब अब्दुल जावेद का कविता पाठ सुनिएगा सुबह 9:00, और नमस्कार रायपुर ये सूचनात्मक कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 7:05 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले संस्कृत में और इसके बाद हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य आरभ्यमाणस्य 25वें G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वत श्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विक कूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेस्मिन् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृणां यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिकरूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखरसम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिकसङ्कटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतनप्रौद्योगिकीनां द्रुतविकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक विषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन् वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्ताः च प्रकाशयितुम् अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृत चर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागम् अगृह्णन् फ्रांस देशस्य नीस नगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेश मंत्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः फ्रांस देशस्य यात्रायाः परिणामे विशेष सूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायां विदेश सचिवः विक्रम मिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30,000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तरप्रदेशस्य गौतमबुद्धनगरस्य जेवरनगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्य विमानसेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इंडिगो एयरलाइन्स संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानं आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरु नगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानं अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊ नगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एमएलए धीरेन्द्र सिंहेन सह प्रथमे विमाने 20 महिलाभिः सह 270,000 यावत् कृषकाः भविष्यन्ति। एते कृषकाः ते सन्ति येषां भूमिः विमानस्थानकस्य कृते अधिगृहीता आसीत्। लखनऊनगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति।

0: अद्य विश्व वायु दिवसः आचर्यते। पवन शक्तेः जलवायु परिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जून मासस्य 15 दिनांके अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवा राज्ये 26,000 वर्षस्य वैश्विक वायु दिवस सम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानां आईसीसी 20x20 विश्वचषक क्रीडायां बर्मिंघम नगरस्य एजवेस्टन नगरे ग्रुपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 64 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68

0: रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

मित्रों कैसे हैं आप। हवा में थोड़ी नमी, बीच बीच में आसमान में बादलों का डेरा, आशा और विश्वास जगा जाता है, है ना। भीषण गर्मी से आजीज आ चुके सारे प्राणी जगत को अब बारिश का इंतजार है, बस थोड़ा सा सब्र। और फिलहाल कहीं कहीं प्री मानसून बारिश से तापमान में गिरावट तो आई है, वहीं ठंडी हवा का झोंका मन को प्रफुल्लित कर जाता है। राजधानी रायपुर के आकाश में बादल छाया हुआ है, अल सुबह कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने भले ही खरीफ सत्र में सामान्य बारिश की भविष्यवाणी की है, लेकिन माटी पुत्र किसानों का उत्साह देखकर तो लगता है कि उनका पसीना इतिहास जरूर लिखेगा। खेतों में फसल लहलहाएगी और खुशी के गीत अवश्य गाए जाएंगे। कल 16 जून मंगलवार से स्कूल खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग ने शाला प्रवेशोत्सव मनाने व्यापक तैयारी कर ली है। नवनिहालों के बढ़ते कदमों को देखकर जहां मन प्रसन्न हो जाता है, वहीं हमारा सीना गर्व से फूला नहीं समाता। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। हम संभावनाओं की जमीन पर चलते हैं, हम संभावनाओं में जीते हैं। हमारी उम्मीद कभी नहीं टूटती, क्योंकि हम सब जिंदा दिल इंसान हैं। हमारा हर कदम नए भारत के निर्माण की इबारत जरूर लिखेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मित्रों, किसान हो या जवान हो या फिर नौनिहालों के कदम, इनका हर कदम संभावनाओं का कदम होता है। और जब ये कदम किसी मुकाम पर जम जाए, थम जाए, तो होठों पर सजता है ये गीत।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: दोस्तों, कहा गया है, उत्तम सुख निरोगी काया। निरोग रहने के लिए योग आवश्यक है। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। योग से शरीर में लचीलापन आता है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, ताकत के साथ साथ मानसिक शांति मिलती है। योग के विभिन्न आयाम हैं, हर आयाम के अपने लाभ हैं। कुल 15 सामान्य आसन हैं: योगासन, योग मुद्रा, बालासन, सुखासन, वीरभद्रासन, वीरभद्रासन भाग 2 योद्धा, त्रिकोणासन, चतुरंग आसन, उत्कटासन, वृक्षासन, नावासन, बकासन, मेवरासन, शवासन और नटराजन। मित्रों, एक योग जो है जीवन शैली है, पद्धति है। योग अपनाएं और रहें निरोग।

श्रोताओं, लोकतंत्र में लोक कल्याण राज्यों की अवधारणा होती है और सरकार इस अवधारणा को साकार करने जनविश्वास के कई कार्यक्रम और नीतियां बनाती हैं। आम आदमी को फौरी तौर पर सेवाएं उपलब्ध कराने छत्तीसगढ़ सरकार ने 1076 1076 1076 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। प्रदेश सरकार ने पिछले 9 जून को इस हेल्पलाइन नंबर को जारी किया है। आखिर क्या है हेल्पलाइन नंबर 1076? इस जादुई नंबर से हमारी समस्याओं का निदान कैसे होगा, कैसे करें आवेदन, इन तमाम प्रश्नों पर जानकारी देंगे। फिलहाल सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

श्रोता दोस्तों, प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर 1076 इसलिए प्रारंभ किया गया है ताकि प्रत्येक नागरिक की समस्या का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। यह व्यवस्था केवल शिकायत निवारण तक सीमित नहीं है बल्कि शासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम है। लोगों की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तक पहुंचेंगी। ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक निगरानी यानी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हेल्पलाइन और शिकायत प्रबंधन प्रणाली राज्य के सभी विभागों को एकीकृत रूप से जोड़ने वाली व्यवस्था है। प्रशासनिक स्तर पर मैप तैयार किया जा चुका है। ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बहुस्तरीय एस्केलेशन प्रणाली के माध्यम से शिकायतों के समाधान की सतत निगरानी की जाएगी। आम व्यक्ति cmhelpline.cg.gov.in वेबसाइट पर दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वेबसाइट पर मोबाइल नंबर की एंट्री करते ही एक ओटीपी नंबर आएगा। ओटीपी नंबर डालते ही अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। विभाग चाहे कोई भी हो, सीधी शिकायत दर्ज होगी। हर शिकायत के समाधान की समय सीमा 24 घंटे निर्धारित की गई है। ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी और कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, इस महत्वपूर्ण सूचना के बाद आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

0: श्रोताओं, सूचनाओं की कड़ी में हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत वर्ष 2026-27 में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। पहले स्थगित की गई प्रवेश परीक्षा को फिर से शुरू करते हुए विभाग ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा 5 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को राज्य के चयनित उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में कक्षा छठवीं में प्रवेश दिया जाएगा। इसमें शैक्षणिक शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाता है और विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं तक अध्ययन की निःशुल्क सुविधा मिलती है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 जून 2026 है, तो ध्यान रखें और समय रहते उठाएं सार्थक कदम। उम्मीद के धरातल पर जब हम सधे कदमों से आगे बढ़ते हैं तो मंजिल जरूर मिलती है, और जब मंजिल मिलती है तो होठों पर सजता है ये गीत।
1: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम,

श्रोताओं, राजधानी रायपुर के कई पेट्रोल पंपों में ग्राहकों को नॉर्मल पेट्रोल की जगह पावर पेट्रोल बेचने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ग्राहकों का आरोप है कि खासकर आउटर के इलाके के कुछ पेट्रोल पंपों में नॉर्मल पेट्रोल उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर महंगा पावर पेट्रोल भरवाया जा रहा है। शिकायतों के बाद प्रशासन ने पंप संचालकों को ग्राहकों की पसंद के अनुसार ही पेट्रोल बेचने के निर्देश दिए हैं। खाद्य विभाग ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए हेल्प 9 नंबर जारी किया है, जिसमें शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता कलेक्ट्रेट हेल्पलाइन नंबर 9977224 99772254

1-888-992-9772-2584 और 9977-2-2-2-5-9-4 इन नंबरों पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने पर विभागीय टीम जांच करेगी और शिकायत सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, अपने अधिकारों के प्रति रहें सजग और सुने ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, राजधानी रायपुर में 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग अभियान की रूपरेखा, बूथ व्यवस्था और निगरानी प्रणाली समेत तमाम रणनीति बना चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में आवश्यकता अनुसार पोलियो बूथ स्थापित किए जाएंगे, जहां प्रशिक्षित टीकाकर्मी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे। इस अभियान को सफल बनाने जन भागीदारी की अपील की गई है। आज के बच्चे कल के भविष्य, जिनके कंधों में देश दुनिया का भार होगा, उन कंधों को मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी। तो श्रोताओं, पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाकर एक सजग नागरिक होने का परिचय दें और सुने ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, सूचनाओं की कड़ी में हम आपको बता दें कि अब राशन कार्ड बनवाने, परिवार के नए सदस्य का नाम जुड़वाने या किसी सदस्य का नाम कटवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने सेवा सेतु ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड संबंधी आवेदन लेने की व्यवस्था लागू कर दी है। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा। आवेदन करते समय केवल 30 रुपये का निर्धारित शुल्क देना होगा। लोक सेवा केंद्र निर्धारित शुल्क से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकेगा। नई व्यवस्था के तहत अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित और निःशक्त जनश्रेणी सहित सभी प्रकार के नए राशन कार्ड बनवाने, सदस्यों के नाम जोड़ने और विलोपित करने अब केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदक को तत्काल आवेदन रसीद नंबर मिलेगा। इसके बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। पात्रता की जांच पूरी होने पर आवेदन स्वीकृत कर राशन कार्ड ऑनलाइन जारी किया जाएगा। जारी राशन कार्ड पर अधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर भी होंगे, जिससे इसकी वैधता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। मित्रों, इस महत्वपूर्ण सूचना के बाद एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आंखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सौलभ सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपराओं, कला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा कलाकारों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से चिन्हारी योजना संचालित की जा रही है। यह सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो कलाकारों को एक संगठित मंच प्रदान करती है ताकि उन्हें सरकारी कार्यक्रमों और विभिन्न अवसरों से जोड़ा जा सके। ये योजना छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए एक सशक्त माध्यम है जो उनकी पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके लिए पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य है। कलाकार www.culture.in चिन्हारी योजना के अंतर्गत पंजीयन का विकल्प चुनकर पोर्टल भरा जा सकता है। आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, कला का प्रकार आदि जानकारी भरकर दस्तावेज अपलोड करें, फिर आवेदन सबमिट करें। सत्यापन के बाद पंजीयन पूर्ण होगा। इस योजना का उद्देश्य राजकीय लोक कला, पारंपरिक कला, संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, प्रदेश के कलाकारों की पहचान स्थापित करना, कलाकारों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करना, भविष्य में योजनाओं, अनुदान और प्रशिक्षण से जुड़ने में प्राथमिकता और प्रतिभाओं को मंच और अवसर उपलब्ध कराना है। श्रोताओं, हमारा छत्तीसगढ़ न केवल धान के विपुल उत्पादन के लिए विख्यात है बल्कि हमारी लोक कला संस्कृति की छटा भी सात समुन्दर पार बिखरने लगी है। अपनी कला को निखारने पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन

0: नमस्कार रायपुर, इस सूचनात्मक कार्यक्रम अभी आपने सुना। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
5: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
4: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
6: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
4: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका,

0: ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
3: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
4: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रूपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रूपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
5: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
4: भारत आज

0: दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
2: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करें।

लोक संगीत इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विदुषी ममता चंद्राकर और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी गीत। आइए अब सुनते हैं ये गीत।

लोक संगीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आज के कलाकार हैं विदुषी ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार और साथी। आइए अब सुनते हैं विदुषी ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकार के स्वर में ये गीत।

लोक संगीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आज के कलाकार हैं विदुषी ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार और साथी। आइए अब सुनते हैं ममता चंद्राकर के स्वर में ये गीत।

विदुषी ममता चंद्राकर के स्वर में ये गीत अभी आपने सुना। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार हैं विदुषी ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार और साथी। आइए अब सुनते हैं कुलेश्वर ताम्रकार के स्वर में ये गीत।

विदुषी ममता चंद्राकर के स्वर में ये गीत अभी आपने सुना, लोक संगीत। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आज के कलाकार हैं विदुषी ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार और साथी। आइए अब सुनते हैं ये गीत।

0: विदुषी ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकार के स्वर में ये गीत अभी आपने सुना। इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए शायर जनाब अब्दुल जावेद का कविता पाठ।
1: गजल पेश करता हूं, उसका मतलब समाप्त फरमाइए।

और ये शेर बतौर खास मुलाजा करें, बूढ़ा बरगद ढूंढ रहा है, बूढ़ा बरगद ढूंढ रहा है आशाओं के दीप लिए।

अपने बीते बचपन के दिन, ये उसकी नादानी है। और गजल का ये आखिरी शेर, लोगों का मन मोह लिया है मेरी गजल के।

रिश्ते, शेर मुलाहजा करें, देखे एहसास की हसी छतरी, देखे एहसास की हसी छतरी, मुझ पे एहसान कर गए रिश्ते, मुझ पे एहसान कर गए रिश्ते। शेर सुने, जेब में छेद क्या हुआ मेरे,

रिश्ते एक एक कर के गिर गए रिश्ते, और टहनियाँ खार दार बाकी है, टहनियाँ खार दार बाकी है, फूल बनकर बिखर गए रिश्ते, फूल बनकर बिखर गए रिश्ते, जब हवाएं हुई मुखालिफ तो

रिश्ते साथ देने से डर गए रिश्ते, और धुंध सी छाई है क्यों रिश्तों पर, धुंध सी छाई है क्यों रिश्तों पर, जहन से क्यों उतर गए रिश्ते, जहन से क्यों उतर गए रिश्ते। और गजल का ये आखिरी शेर, छीन कर राह तो सुकून मेरा, छीन कर राह तो सुकून मेरा, दरबदर मुझको कर गए रिश्ते, दरबदर मुझको कर गए रिश्ते। अगली गजल का मतलब पेश खिदमत में मुलाहजा करें।

मरने से पहले मेरे अजादार आ गए, मरने से पहले मेरे अजादार आ गए। और इस गजल का मक्ता पेश खिदमत मुलाजा करें।

0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: कविता पाठ, इसमें अभी आप सुन रहे थे शायर जनाब अब्दुल जावेद का कविता पाठ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए विजू शाह के संगीत निर्देशन में इंदेवर का लिखा गीत, आवाजें साधना सरगम और पंकज उधास की, फिल्म का नाम है मोहरा।

विजू शाह के संगीत निर्देशन में ये था इंदेवर का लिखा गीत। फिल्म मोहरा के लिए स्वर दिया था साधना सरगम और पंकज उधास ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम को फिल्म त्रिदेव में, बोल आनंद बख्शी के संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में ये था आनंद बख्शी का लिखा गीत। फिल्म त्रिदेव के लिए स्वर दिया था मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान।

0: कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में ये था आनंद बख्शी का लिखा गीत। फिल्म त्रिदेव के लिए स्वर दिया था मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नदिया के पार, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था हेमलता और जसपाल सिंह ने, गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: बिंदिया, शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल को फिल्म बेटा में। शब्द रचना समीर की और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल को अभी आपने सुना फिल्म बेटा में। शब्द रचना समीर की थी और धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। इस गीत के साथ ही क्षेत्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, इसी सभा में 10:30 पर क्षेत्रपट संगीत का पुनः आनंद ले सकेंगे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये

जयपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज की कलाकार हैं सीमा दत्ता। पहले सुनते हैं ये रचना।

0: सुगम संगीत इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सीमा दत्ता को। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सर

0: सुगम संगीत इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सीमा दत्ता को। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी सरकार। बस्तर के हर जनजाति परिवार को दो दो गाय या भैंस दी जाएगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त। आज से खंडपीठों और एकलपीठों में फिर से शुरू होगी नियमित सुनवाई। और राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। अंतिम दिन जीते 4 पदक। अब समाचार।

0: विस्तार से। रायपुर में कल एक पुस्तक के विमोचन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के कारण बस्तर के लोग कई दशकों तक विकास से दूर रहे। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य किए जाएंगे, इसके लिए रोडमैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गांव-गांव में राशन दुकानें खोली जा रही हैं और सुरक्षा शिविरों को सेवा डेरा के रूप में विकसित किया जा रहा है। कृषि पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ वनोपज के मूल्य संवर्धन पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर में हर परिवार को दो दो गाय या भैंस दी जाएगी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि लंबे समय तक उपेक्षा के कारण नक्सलियों ने बस्तर को अपनी प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया। वहीं उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार ने नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से दिया है और अब बोली का जवाब बोली से, यानी गलत नैरेटिव का जवाब सही जानकारी से दिया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन युवाओं की नक्सलियों ने नसबंदी कर दी थी, उनकी नसबंदी खोलने का प्रयास किया जा रहा है और जिन मामलों में यह संभव नहीं होगा, उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। समारोह को पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर और छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर तेरा राज नहीं आएगा रे पुस्तक के लेखक राजीव रंजन प्रसाद और रचना नायडू भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू होगी। आज से अधिवक्ता अदालत कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि पहले की तरह कई मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश 18 मई से शुरू हुआ था। इस दौरान केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए प्रत्येक सप्ताह विशेष अवकाशकालीन पीठों का गठन किया गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को पैसा वापस पाने के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित कर लेने की सलाह दी है। रायपुर में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। नया रायपुर स्थित सेंधलेक में हुई इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 4 पदक जीते। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 3 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। ओवरऑल खिताब मध्यप्रदेश ने 257 अंकों के साथ जीता, जबकि केरल दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से लगभग 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में उपमुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। श्री साव ने समापन समारोह में खिलाड़ियों और विभिन्न राज्यों से आए कायकिंग केनोइंग संघ के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कायकिंग केनोइंग को और आगे बढ़ाने सरकार हर संभव सहयोग देगी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी सरकार। बस्तर के हर जनजाति परिवार को दो दो गाय या भैंस दी जाएगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त, आज से खंडपीठों और एकलपीठों में फिर से शुरू होगी नियमित सुनवाई। और राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, अंतिम दिन जीते 4 पदक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत सशक्त भारत विषय पर केंद्रित।

0: जानकारी।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
2: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चलें, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
2: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
3: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती हैं तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज़्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियाँ संपदाएँ चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4

0: डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज़ को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज़ वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज़ को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में GST का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2000

0: 47 तक जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखी गढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया,

जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माने प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी हैं वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से जैसा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, उसूली पर लटकाने तक का उपक्रम किया गया था, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा, ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है, 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2,500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप

0: को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे। और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आज़ादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर की श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक

0: गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सकें, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए। इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आज़ादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुँच

0: बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
1: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
0: जी,
1: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहाँ तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है, और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है, और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
0: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
1: देखिए, आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहाँ व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सकें, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े

0: पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा, या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसे संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूँगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहाँ कहीं भी अवसर मिले, जैसे क्या भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़ें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत सशक्त भारत पर केंद्रित कार्यक्रम। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए कुमार शानू और अलका याज्ञी को फिल्म करण अर्जुन में, बोल इंदिवर के संगीत राजेश रोशन का।

कुमार शानू और अलका याज्ञिक को भी आपने सुना फिल्म करण अर्जुन में। बूल इंदिवर के संगीत दिया था राजेश रोशन ने।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह को फिल्म लैला में, बोल सावन कुमार के, संगीत उषा खन्ना का।

0: उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में ये था सावन कुमार का लिखा गीत। फिल्म लैला के लिए स्वर दिया था लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीब और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
3: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
4: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
2: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
5: गीत मेरे होठों को
2: कभी कोई किस्सा याद आता है।
6: यादें
2: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
7: मुझे कुछ कहना है,
8: मुझे भी कुछ कहना है।
2: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
9: सुनिए।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और साथियों को, बोल फारूक कैसर के, संगीत बप्पी लाहिरी का, और फिल्म का नाम है लहू के दो रंग।

लहू के दो रंग। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर दिया था किशोर कुमार और साथियों ने, शब्द रचना फारूक कैसर की थी और धुन बनाई थी बप्पी लाहिरी ने। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और अलका याज्ञिक को, बोल आनंद बख्शी के, संगीत अनु मलिक का और फिल्म का नाम है चमत्कार।

0: कुमार सानू और अलका याज्ञिक को अभी आपने सुना फिल्म चमत्कार में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी अन्नू मलिक ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिक्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियान शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के

0: सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रही हैं। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हुर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हुर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: हुर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 1200 अंक की बढ़त के साथ 76725 पर, जबकि निफ्टी लगभग 360 अंक की बढ़त के साथ 23985 पर कारोबार कर रहा था। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्वसनीय विश्वस्तरीय अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में हुए हादसे में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कल वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। यह हादसा मालशिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवड़ी के पास हुआ था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोमा देवरा को बधाई दी है। दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में 7 दिन तक अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक प्रसारण फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। प्रस्तुति प्रवीणा त्रिपाठी की है।

0: फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला प्रवीणा त्रिपाठी के राम राम आओ आप मन के स्वागत आज के एक कार्यक्रम मा संगी हो। आज के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो रही से गुरुवार के दिन 11 बजे ले 11 बज के 30 मिनट तक ता आवो शुरू करन आज के फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो और लेवन ए पहला फोन कॉल। हेलो फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार कौन बोला थो?
1: लोचन देवांग बोला था दीदी।
0: कहाँ ले बोला थो भैया?
1: करी बता हाँ था बोला था
0: दीदी। का काम बूता चलते भैया?
1: कपड़ा बुनाई काम करते दीदी।
0: हाँ।

0: और समय समय में माता सेवा में जाता है नवरात्रि पर्व में।
1: अच्छा, कहाँ कहाँ जात हो आप मन?
0: हमन हाँ जी हाँ जी हाँ निमंत्रण से तिहाँ तिहाँ जस गीत गाय जसन दीदी हमन हाँ।
1: अच्छा,
0: यहाँ गाना गा सुनू कहा थे दीदी गरसन तोरे पाती वो तोरे अंगना में आते हूँ पान फूल नरियल चढ़ाते हूँ जसला तोरे गाते वो ये मोरे दाई जसला तोरे गाते वो यही गाना गाथन गुटी थी हमारा।
1: अच्छा, तो आप मनला आज के कार्यक्रम में कौन गीत ला सुनना है?
0: मला ना बेहतर राम के माया आशीष दे वाला गाना सुना देते दीदी।
1: लोचन देवांगन जी, आप मनला सुनवा था ना आपके पसंद के बैतल राम साहू के गाए यही गीत था। और फोन करे बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। हेलो, कौन बोला था?
1: मैं
0: धन्नूराम साहू जी के हम एक कार्यक्रम में स्वागत करत हन।
1: जी मैडम।
0: का करत हो भैया आप मन? हाँ,
1: खेती बाड़ी के तैयारी करत मैडम।
0: अच्छा, तो आप मन के कोती पानी बरस गए है का?
1: नहीं,
0: अभी नहीं बरसे है।
1: हाँ।
0: का तैयारी आप मन करत हो अभी?
1: खेती बाड़ी तैयारी करे धान कांचा खुटी है जो कई भर नहीं है।
0: अभी का लगत है पानी कतका टाइम तक बरस ही?
1: अब इंतजार है मैडम, अब 16-17 के बताए थे वैज्ञानिक है। इंतजार है।
0: अच्छा, तब बताओ आज के कार्यक्रम में आप मल्ला कौन गीत सुनना है?
1: आज के कार्यक्रम में पवन चंद्रा करके सुनना है, रज रज आके गिर गया पानी। एक मिनट में बेटी से बात कर ले मैडम।
0: जी जी।
2: हेलो
0: हेलो।
2: हाँ।
0: का नाम है आप मन के?
2: प्रिया साहू।

0: या का करथो?
1: पढ़ाई लिखाई करत हूँ, दसवीं।
0: कौन क्लास में पढ़थो आप मन? तो अभी 10वीं में गए हो कि परीक्षा हो गए? होकर हो
1: हो गई।
0: गए तो पास हो गए अपन।
1: हाँ
0: चला बढ़िया बने हुई से। तो प्रिया आप मनला भी यही गीत सुनना है?
1: हाँ
0: चलो तो आप मनला सुनवाथन हम पवन चंद्राकर के गाए ए गीत। हा फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: हेलो, सूरज यादव बोला था मैडम।
0: कहाँ ले बोला तो सूरज जी?
1: खुड़िया बांध राजा से
0: कौन कोती पड़त है यहाँ?
1: मुंगेली जिला।
0: अच्छा, कैसे मौसम है आपके मुंगेली जिला के अभी?
1: कल तो बारिश हुई समय
0: तो बने हो।

0: कि थोड़ा बहुत होई से?
1: हल्का फुल्का
0: होई से, तो गर्मी से थोड़ा राहत मिले होई?
1: हाँ, अभी धूप हवाई गर्मी हवाई।
0: तो का करथो आप मन, का बूता चलथे?
1: किसानी वाला काम
0: चलथे।
1: हाँ।
0: तो ऐसो के साल में कौन फसल ला बोना है आप मन ला?
1: एक ही फसल रहती बस चलते, पानी का साधन नहीं है, धान। हाँ।
0: तो ओकर तैयारी होगी खेत मन के?
1: हाँ।
0: चलो ठीक है, तो सूरज यादव जी अब बताओ आप मन ला आज के कार्यक्रम में कौन गीत ला सुनवाथन, कौन कलाकार के?
1: कोई भी हो, दुखिया बाई के।
0: तो सूरज यादव जी आप मन ला सुनवाथन दुखिया बाई के गाये गीत। फोन करे बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: हेलो।
0: कौन बोला तो भैया, कहाँ ले बोला तो?
1: मैं राजेंद्र कुमार जोशी बोला था दीदी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कहाँ ले बोला तो?
1: ये हाँ, मैं बोला था कुमार था छिरहा।
0: राजेंद्र कुमार जोशी जी, आपके हम एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करथन।
1: धन्यवाद दीदी।
0: बताओ, का काम बूता चलते?
1: अरे अभी ये दे खेती किसानी चला दीदी, ये दे ती है उरी दुरी बो रहे हैं। हाँ, दे लुआ आगे अभी दे फिर।

0: धान वान की बुआई जब चालू होगी पानी वानी गिरी था।
1: हाँ हाँ, तो कैसे मौसम है आप छिरा में?
0: अभी छिरा के मौसम दीदी का है, गर्मी है और शाम के थोड़ा सा हवा बदली जाते है। 24 में लगा रहे दीदी, 24 में लगा रहे, 2.5 साल के बाद लगत है।
1: तो बने हो इस ना, थोड़ा टाइम मिल गया ना, दूसरा श्रोता मन आप मन के जो साथी मन है वो मन ला बात करे के टाइम मिल गए है ना, तो बने करे हो भैया आप। तो बताओ आज के कार्यक्रम में कौन कलाकार की गीत आप मन ला सुनना है?
0: दीदी मोर भाषा मन के नाम ले बताओ।
1: ले लो भैया,
0: सुनील जोशी, सुनील भट्ट है और योगेश भट्ट है, अजय बंटी और मोर बेटा के रूपेश जोशी। मैं हाँ वो लक्ष्मण मस्तूरिया के मैं बंधत हूँ दिन रात वाला गाना सुनने रही दीदी।
1: आप मन ला सुनवाते ना, आपके फरमाइश माँ लक्ष्मण मस्तूरिया के गाए ये गीत है। फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन कराओ, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: राम राम दीदी,
0: राम राम भैया, को बोला थो?
1: मैं कमलेश कुमार यदु ग्राम आमा खोनी बलौदा बाजार जिला से बोला था दीदी।
0: कमलेश कुमार जी, आप मन के हम एक कार्यक्रम में बहुत बहुत

0: स्वागत करथन। का काम बूता चलथे?
1: खेती बाड़ी करथन दीदी, कांटा खुटी बीड़ी चलत हे।
0: हाँ हाँ। अच्छा,
1: गर्मी है दीदी, सवेरे सवेरे जाथन 10-11 बजे तक के, फिर घर आ जाथन।
0: हाँ हाँ।
1: अभी ट्रैक्टर वेक्टर में खेत वेत जोतई भी चलत हे।
0: अच्छा, तो आप मन केवल खेती करत हो कि और कुछ आप मन के रोजगार के साधन है?
1: और तो नहीं दीदी, खेती ही बाड़ी करता हन। और बाकी फैमिली मन तो सब रायपुर में रहते, माँ बाबू जी है, भाई 3 जने।
0: अच्छा,
1: मोरे घर में एक लड़की है, मोर लड़का नाम लक्ष्मीकांत यदु है, मोर लड़की का नाम युषिका यदु है दीदी।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। तो पढ़त है आप मन के बच्चा मन?
1: हाँ, मोर बच्चा पढ़त है, बड़े वाला लड़का तेन छठवी पढ़ी है साल, और छोटे वाले लड़की तेन 3री क्लास में पढ़ी है साल।
0: अच्छा अच्छा, तो आज के कार्यक्रम में आप मन कौन कलाकार के गीत सुनना चाहत?
1: मोला धुरवा राम मरकाम के सुना देते दीदी, जतन करब भूया के संगी जतन करब वाला।

0: और बाकी फैमिली मन तो सब रायपुर वाले थे, माँ बाबू जी है, भाई तीन जने।
1: अच्छा,
0: मोरे घर एक लड़की है, मोर लड़का का नाम लक्ष्मीकांत यदु है, मोर लड़की का नाम युषिका यदु है दीदी।
1: अरे वाह, क्या बात है भाई। तो पढ़ा थे आप मन के बच्चा मन?
0: हाँ, मोर बच्चा पढ़ा थे, बड़े वाला लड़का तेना छठवीं पढ़ी है साल, छोटे वाले लड़की तेना तीसरी क्लास में पढ़ी है साल।
1: अच्छा अच्छा, तो आज के कार्यक्रम में आप मन कौन कलाकार के गीत सुनना चाहत?
0: बोला धुरवारा मरकाम के सुना देते दीदी, जतन करब भूया के संगी जतन करब वाला।

0: हेलो, फोन कराओ,
1: हेलो।
0: छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। जी भैया, कौन बोला थो?
1: नगरी से बोला था, भानेंद्र कुमार साहू।
0: भानेंद्र कुमार साहू जी के हमें कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करथन।
1: धन्यवाद मैडम।
0: का करथो आप मन? हाँ,
1: बस खेती किसानी करथो मैडम।
0: का काम बुता चलते खेती किसानी के? का चलते काम?
1: अभी बुआई पर जोताई के तैयारी करा था मैडम।
0: अच्छा, कुछ रुख राई लगाबो ए साल? काबर के बहुत अब्बड़ गर्मी पड़े
1: हाँ
0: हे।
1: मैडम, अब्बड़ अब्बड़ गर्मी पड़ते, रुख राई लगाबो और बहुत गर्मी लगती मैडम।
0: जी
1: रुख
0: जी
1: राई लगाना चाहिए किसान भाई मन ला।
0: बहुत जरूरी है। आप मन कुछ कहना चाहत हो अपन संगवारी मन ला?
1: हाँ, सबो किसान भाई मन ला रुख राई लगाओ और बढ़िया पर्यावरण बचाओ।
0: हाँ
1: मोर एक ए मैडम।
0: हाँ हाँ तब बने कहे हो भैया। तो बताओ, आज के कार्यक्रम में कौन कलाकार के गीत आप मनला सुनना है?
1: महादेव हिरवानी के जी सुनना है मैडम।
0: तो आवो सुनवाथन आप मनला भानेंद्र जी महादेव हिरवानी के गाए गीत। हा फोन करे पर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: हाँ नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार भैया, कौन बोला तो?
1: हाँ नर्मदा धाम ग्राम कुरचुली पोस्ट महादेव कैलाश यादव बोला।
0: कैलाश यादव जी के हम एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत हन।
1: हाँ धन्यवाद दीदी।
0: बताओ कैलाश जी, का बूता चलते?
1: बस मोर गांव दुकान है, छोटे से किराना के,
0: हाओ
1: और किराना दुकान के काम करत रहो, और आपके आकाशवाणी प्रोग्राम में सुनत रहो, बहुत पुराना श्रोता है यहाँ।
0: हाँ हाँ आप मन के नाम तो चिट्ठी में भी घलाओ आवत है, हमार पाती जो उन पठोवत हो।
1: आप चिट्ठी देश तो मैं यहाँ का है, ईमेल वगैरह नहीं चला था, मतलब टच वाले मोबाइल तो अभी चलत है, 60 साल हो, 5-6 साल हो, लिखू कहा तो लिखा पढ़ी की तरह रख।
0: बने हवे
1: तो
0: बने, बिल्कुल बिल्कुल। पाती में जौन आनंद है वो ईमेल में उतना नहीं है, लेकिन समय के साथ बदलना जरूरी है नहीं? ता बताओ कैलाश भैया, आज के कार्यक्रम में आप मनला कौन कलाकार के गीत सुनवा देन?
1: बैतराम साहू को सुना देते हो, आज ही लगे वही तो माया यार, दुख दुख में बीता तरती है, बैतराम साहू और आशा साहू।
0: तो कैलाश यादव जी, आप मनला सुनवा था ना, आपके पसंद में एक गीत था, फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ।
1: नमस्कार दीदी, मैं ग्राम भानपुरी मुसरा ले आत्माराम यादव बोलत हूँ।
0: आत्माराम यादव जी के हम एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करथन।
1: धन्यवाद दीदी।
0: का बूता करतो भैया?
1: मैं घर में कपड़ा सिलाई काम करतो दीदी।
0: अच्छा अच्छा तो अभी कैसे चलत है आप मन के रोजगार? हा
1: रोजगार है, बढ़िया चलत है। अब लइका मन के कपड़ा मन आ गए है बनाए बर स्कूल वाले।
0: हाँ हाँ
1: हाँ, तो वही काम करत हूँ।
0: बढ़िया बने हैं भैया। तो कैसे मौसम है आपके गांव के?
1: अभी तो साफ है, काली शाम की पानी गिरे रही थी मैडम थोड़ा से।
0: हाँ हाँ
1: हाओ
0: तो ठंडा काइस की नहीं?
1: हाओ हाओ पहली ले अब बहुत राहत मिल गए है।
0: तो
1: हाओ
0: रूख राई हावे कि नहीं आप मन के गांव में?
1: हावे दीदी, बहुत रुख राई हावे हमारे गांव में।
0: तो अभी
1: हाओ
0: बारिश आने वाला है तो का तैयारी आप मन करे हो कुछ खेत खार के?
1: हाँ, खेत खार ला सब काटा खुटी भी नहीं चलत रही से। हाँ, छेना लकड़ी भर आ गए है।
0: हाँ
1: हाँ
0: तो आप मन खेती करत हो कि आप मन खाली अपन दुकान में बैठत हो?
1: दुकान में घलो बैठन दीदी और खेत खार के काम घलो देखन।
0: हाँ हाँ सबो चीज जरूरी है भैया।
1: हाँ हाँ
0: हाँ हमर आकाशवाणी के कौन कौन कार्यक्रम आप मन सुनत हो?
1: आकाशवाणी के जम्मो कार्यक्रम मन ला सुनथन दीदी। युवाणी है, बाल वाटिका है, चौपाल है। हाँ सबो कार्यक्रम के आनंद लेत रहथन।
0: तो सबले बने कौन कार्यक्रम लगते आप मन ला?
1: नहीं वैसन छाटन तो नहीं सकबो दीदी, सबो कार्यक्रम गजब सुघर लगते।
0: हाँ हाँ
1: हाँ
0: तो मतलब आप मनला आकाशवाणी रायपुर आपके मन के कार्यक्रम प्रसारित करते तो आप मनला बड़ा बने लगते, एकदम मस्त लगते है नहीं?
1: हाँ बढ़िया लगते दीदी, बढ़िया लगते।
0: तो आत्माराम भैया बताओ आज के कार्यक्रम में कौन कलाकार के गीत आप मनला सुनना है?
1: रही रही पिंजरा ले सोचा थे मैना।

तसंगी हो ए रहीस आज के फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में गीतला जोरे रहिन बीरभान साहू मनहा ता अब दौबिदा आपन संगवारी प्रवीणा त्रिपाठीला राम राम।

0: फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो। हमारा यह साप्ताहिक प्रसारण अभी आपने सुना, प्रस्तुति प्रवीणा त्रिपाठी की थी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। और मानसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब समाचार विस्तार से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। इस दौरान आयोजित किए जाने वाले शाला प्रवेशोत्सव के लिए स्कूल प्रबंधन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत सहित विभिन्न गतिविधियां अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। आज से अधिवक्ता अदालत कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख रहे हैं। हालांकि पहले की तरह कई मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश 18 मई से शुरू हुआ था। इस दौरान केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए प्रत्येक सप्ताह विशेष अवकाशकालीन पीठों का गठन किया गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे NTA

की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को पैसा वापस पाने के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित कर लेने की सलाह दी है। रायपुर में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। नया रायपुर स्थित सेंधलेक में हुई इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 4 पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। ओवरऑल खिताब मध्यप्रदेश ने 257 अंकों के साथ जीता, जबकि केरल दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से लगभग 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में उपमुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। श्री साव ने समापन समारोह में खिलाड़ियों और विभिन्न राज्यों से आए कायकिंग केनोइंग संघों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कायकिंग केनोइंग को और आगे बढ़ाने सरकार हर संभव सहयोग देगी। मानसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये सभी संरक्षित वन क्षेत्र अब 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। वन विभाग के अनुसार जंगलों के दरवाजे पर्यटकों के लिए 2 अक्टूबर से दोबारा खोले जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर 241 बस्तर बटालियन के सेडवा स्थित वाहिनी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बटालियन के 24 अधिकारियों और जवानों ने स्वैच्छिक रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। डिमरापाल स्थित स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेमोरियल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की टीम ने शिविर में सहयोग किया। इस दौरान जवानों ने नियमित रक्तदान और समाज में जागरूकता बढ़ाने का संकल्प भी लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। और मानसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
0: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम

0: परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, जय हिंद जय जोहार। बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा आ गया है, बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
1: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
1: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
0: आदरणीय अजीत जी व बिमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
1: जी,
0: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे, लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
1: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
0: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
1: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है, तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
0: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
0: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब चलिए, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
1: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर

0: तो 11 हो गया।
1: वो जोर से हंसा।
2: बुद्धू कौआ।
1: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
1: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
1: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई।
3: लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
1: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
3: मैंने कहा ना, जो चाहते हो निकाल कर दूं।
1: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
3: क्या कंचा चाहिए?
0: नहीं।
1: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
0: नहीं।
3: तो फिर?
1: सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओ,
1: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता कंचा

0: ले सकता था। लिया होता तो।
1: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
2: सात का पहाड़ा सुनो।
3: सात एकम सात,
4: सात एकम सात,
3: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
5: आ गया
1: जॉर्ज, दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
1: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
6: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
1: मास्टर जी,
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
1: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
6: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
1: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
6: अप्पू,
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
6: अरे, तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
6: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
6: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
1: मास्टर जी,
6: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
1: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
6: हाँ हाँ, बता, डरना मत।
1: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
6: हाँ हाँ,
0: वो कांपते हुए बोला,
1: वो कंचा।
6: कंचा?
0: फिर

0: आ गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
1: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
2: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
2: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ,
2: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो?
1: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
1: क्या किसी को कोई शक नहीं?
2: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू क्या सोच रहे हो?
2: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
2: वो पैसे।
1: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
2: हाँ।
1: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
0: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
2: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
0: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
1: लो।
0: मास्टर जी ने कहा,
1: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
0: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
2: 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
1: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
2: फीस देनी है।
1: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
1: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।

0: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
2: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
3: बच्चों एक एक करके आओ,
2: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
4: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
2: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
2: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो।
0: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
2: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना

0: आता है?
1: वो नहीं जानता था।
0: तो फिर?
1: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया।
2: दे दो।
0: ये लो।
1: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
2: माँ

0: से चिपकाए वो घर आया। उसकी मां शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर मां के गले लग गया।
1: मां,
2: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख मां घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
1: क्या देखो मां?
2: अरे ये क्या है?
1: मैं नहीं बताऊंगा।
2: मुझसे नहीं कहेगा?
1: कहूंगा। मां, आंखें बंद कर लो। 1 2 3।
0: वो कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहां से लाया?
1: खरीदे हैं।
2: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा।
1: दोपहर को दिए थे ना?
0: मां ने दांतों तले उंगली दबाई।
2: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर मां की पलकें भीग गईं। उसकी मां रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि मां क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ मां को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा।
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
2: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
2: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी मां भी हंस पड़ी, आंसू से गीले मां के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
3: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंजनी। आज इसमें सुनिए देवदास बंजारे और साथियों से पंथी गीत। कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है देवदास बंजारे और साथियों की आवाजों में ये छत्तीसगढ़ी रचना।

कार्यक्रम लोक रंजनी में आज कलाकार हैं देवदास बंजारे और साथी। आइए इन्हीं की आवाजों में सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

कार्यक्रम लोक रंजनी में आज आप सुन रहे हैं देवदास बंजारे और साथी की आवाज़ों में पंथी गीत। इन्हीं की आवाज़ों में आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

कार्यक्रम लोक रंजनी, अभी आप सुन रहे हैं, कलाकार हैं देवदास बंजारे और साथी। इन्हीं की आवाज़ों में आइए सुनते हैं ये पंथी गीत।

0: कार्यक्रम लोक रंजनी आज कलाकार हैं देवदास बंजारे और साथी। इन्हीं की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं पंथी गीत। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ों में कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।
1: कोनो आगी नहीं कामते सुमले सतनाम।

0: कार्यक्रम लोक रंजनी अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे देवदास बंजारे और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। एक बजने को है, हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म का गीत आवाज महेंद्र कपूर की है। गीत लिखा है HS बिहारी ने और संगीत तैयार किया है OP नैयर ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। संगीत ओपी नैयर का है, फिल्म है तुमसा नहीं देखा।

फिल्म छाया का गीत आपको सुनवा रहे हैं तलत महमूद और लता मंगेशकर की युगल स्वर में, गीत राजेंद्र कृष्ण का और संगीत सलील चौधरी का है।

लीजिए आप सुनिए फिल्म गैम्बलर का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा है नीरज ने, संगीत तैयार किया है SD बर्मन ने।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। संगीत कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया है और गीत लिखा है इंदिवर ने।

इसी के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

स्पोर्ट्स स्क्रीन प्रसारित होगा रात 8:30 पर। यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ देर में यानी 1:30 पर सुनिएगा महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। आज की बात का विषय होगा वृद्धजनों का अपमान, कानूनी जुर्म। आज की बात आपकी चिट्ठी, एक ही कलाकार और टिप्स, पालतू पशुओं से नन्हे बच्चों की सुरक्षा, बरसात पूर्व कपड़ों का रखरखाव, कैसे स्वस्थ रखें गमले में लगे पौधे। चित्रपट संगीत सुनिएगा दोपहर 2:30 रात 8:00 और रात 9:15 पर। शाम 5:10 पर सुनिएगा युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। इसमें आजकल का विषय होगा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। विज्ञान मंच के अंतर्गत वार्ता एआई की दुनिया। वार्ताकार होंगी अक्षदा मातुरकर और शामी गजल। शाम 6:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी अमृता नंदी। इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगी सीमा दत्ता। किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल प्रसारित होगा शाम 7:21 पर। आज की बात का विषय होगा खरीफ फसल में उन्नत बीज के चुनाव। आज की सलाह का विषय होगा मछली पालन एवं प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रेम कुमार प्रधान, वैज्ञानिक केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई। रात 9:25 पर प्रसारित होगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम विदेश नीति। रात 10:00 सुनिएगा सुरों का सफर, पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित शिव कुमार शर्मा से सुनिएगा संतूर वादन। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ

किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल प्रसारित होगा शाम 7:21 पर। आज की बात का विषय होगा खरीफ फसल में उन्नत बीज के चुनाव। आज की सलाह का विषय होगा मछली पालन एवं प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रेम कुमार प्रधान, वैज्ञानिक केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई। रात 9:25 पर प्रसारित होगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम विदेश नीति। रात 10 बजे सुनिएगा सुरों का सफर, पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित शिव कुमार शर्मा से सुनिएगा संतूर वादन। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5:05 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया।

नज़र ऊंची हुई तो दुआ बन गई, नज़र नीची हुई तो हया बन गई, जो झुक के उठी तो खता बन गई और उठ के झुकी तो अदा बन गई, जब भी नज़र राह पर रुकी तो किसी का इंतज़ार बन गई। तो इंतज़ार के इन पलों को ख़त्म करते हुए शुरू करते हैं आज की बिंदिया। तो स्वीकार कीजिए आपकी अपनी बिंदिया सखी श्वेता बोहरा का स्नेह भरा नमस्कार। सखियों, इंतज़ार केवल एक शब्द ही नहीं, वो एहसास है जब हम किसी के आने के पूर्व उसकी प्रतीक्षा में मन में उठने वाले भावों का हल्का सा स्पंदन, जो उम्मीद कर देता है कि बस कुछ समय और। वैसे सखियों, इंतज़ार प्रतीक्षा के इस एहसास से हम सभी रूबरू हुए हैं होंगे, पर जीवन के एक पड़ाव में ये एहसास और इंतज़ार जीवन की आदत में शुमार हो जाता है। सखियों, वृद्धावस्था जीवन का वो पड़ाव है जब कमोबेश हर बुजुर्ग इस इंतज़ार को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बना लेता है। घर के बच्चे अगर नौकरी कर रहे हों तो उनके घर आने का इंतज़ार, तो पोते पोती नातियों के साथ कुछ फुर्सत के पल बिताने का इंतज़ार, किसी पुराने मित्र रिश्तेदार या फिर अपने जो दूर हैं उनसे बात करने का और मिलने का इंतज़ार। बहनों, अगर हम गौर करें तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो रात को एक बार सोने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखते हैं कि घर के सभी सदस्य घर में आ गए हैं कि नहीं, और अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश अभी तक घर न पहुंचा हो तो उसके आने की प्रतीक्षा में उनकी नींद भी उड़ जाती है। जब तक वो व्यक्ति न आ जाए तब तक वो सो भी नहीं पाते हैं चैन से। सखियों, बड़े बुजुर्गों का ये अपनापन ये एहसास दिलाता है कि हम हैं ना। सखियों, बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार समाज का अनमोल हिस्सा है, उनके अनुभव और ज्ञान ये हमेशा जिंदगी में एक नई सीख देते हैं। पर बहनों, कहीं कहीं ऐसा भी देखने को आता है कि इन वृद्धजनों पर लोग अत्याचार करते हैं। कभी कभी ये शोषण मानसिक स्तर पर, तो कभी कभी ये शोषण जो होता है वो शारीरिक स्तर

पर भी होता है, यानी शारीरिक अत्याचार भी होते हैं। सखियों, इन दुर्व्यवहार और अत्याचारों को रोकना बेहद ज़रूरी है, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज यानी 15 जून को हम वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन बुजुर्गों के प्रति होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने और जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। बहनों, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने बुजुर्गों, वृद्धजनों का ख्याल रखें, उनकी भावनाओं को समझें, उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की राह प्रशस्त भी करें। वैसे सखियों, हमारे कानून में भी वृद्धजनों को कई अधिकार प्राप्त हुए हैं, और कानून और नियम और कुछ धाराएं ऐसी भी हैं जो उनको विशेष संरक्षण भी प्रदान करती है। वैसे सखियों, मैंने कहीं पढ़ा था, वो आपसे साझा कर रही हूँ, कि बड़े बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत तो न थी, बड़े बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, मगर जब मेरा सिर झुका तो सिर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। वैसे सखियों, बातचीत तो हमारी चलती ही रहेगी, पर मुझे वापस लौटना है, क्योंकि आज है माह का तीसरा सोमवार, और आज हम लाते हैं आपके लिए वो क्रम जो आपके पत्रों और विचारों से जुड़ा है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं क्रम, आपकी चिट्ठी आई है। सखियों, हमें डाक के माध्यम से और साथ ही ईमेल के माध्यम से भी पत्र प्राप्त होते हैं, तो ये जो पहला पत्र मेरे हाथ में है, इसे ईमेल के माध्यम से भेजा है हमारी इन सखियों ने, जो हैं गांव परसाटोला, जिला अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ से, सुलोचनी मसिया, तुषारणी, शीला, पायल, गरिमा, दीपिका, रोहिणी, काजल, मेघा, वर्षा और जुनियाबाई मसिया ने। ये सखियाँ लिखती हैं कि 3 मई की बिंदिया को इन्होंने पसंद किया है सबसे पहले तो, और इस दिन की बिंदिया को लेकर आई सखी हीना देशपांडे। आज की चर्चा में इन्होंने महिलाओं की आत्मनिर्भरता और अपनी प्रतिभा को कैसे सवारे विषय पर जो बातचीत की, इन्हें बेहद रुचिकर लगी। साथ ही साथ आपकी रसोई में शरबत बनाने के लिए अलग अलग विधियाँ बताई गई, और गर्मी से बचने के लिए जो उपाय बताए गए वो भी इन्हें रोचक और ज्ञानवर्धक लगे। कार्यक्रम की अच्छी प्रस्तुति के लिए इन्होंने हीना देशपांडे और बिंदिया विभाग को बधाई प्रेषित की है। तो बहनों, आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगा, इसके लिए हृदय से आभार। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम हमारी बिंदिया को ऐसे सजा कर लाएं कि वो मनमोहक लगे और आपको पसंद भी आए। यूं ही बिंदिया सुनती रही और अपने विचार हमें प्रेषित कीजिएगा। और सखियों, ये अगला जो ईमेल आया है वो 7 मई की बिंदिया के लिए आया है, जिसे प्रेषित किया है हमारी इन सखियों ने। ये है सिंगार बाड़ी घुटकु से धनेश्वरी पटेल, सोनम पटेल, मानवी पटेल ने, और इस दिन उन्होंने उद्यमिता के क्षेत्र में, जो आजकल की बात हुई थी, उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी विषय पर चर्चा सुनी, जो इन्हें बेहद अच्छी लगी और बेहद रुचिकर लगी। साथ ही काव्य सौरभ में शशिकला दुबे ने कविता पाठ सुनाया, जो बेहद रोचक लगा। साथ ही गीतों का चयन भी बेहद कर्णप्रिय लगा। सफल प्रसारण के लिए इन्होंने शशिकला दुबे जी के साथ पारोमिता जी, जो उस दिन कार्यक्रम को सजा के लाई थी, उनको बधाई प्रेषित की है। साथ ही साथ बिंदिया प्रभाग को भी इन्होंने सहृदय बधाई प्रेषित की है। तो सखियों, हमारी तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम ऐसे विषय लेके आएँ जो आपको अच्छे लगे, रुचिकर लगे और आपको पसंद भी आए। आपने अपने विचार साझा किए और हम कार्यक्रम के माध्यम से आपकी जो बधाई है वो शशिकला दुबे जी के साथ पारोमिता जी को प्रेषित करते हैं। यूं ही पत्रों का सिलसिला बरकरार रखिएगा और अपने विचार और अपने सुझाव भी हमें लिखते रहिएगा। सखियों, ये मेरे हाथ में जो अगला पत्र आया है ना, ये 17 मई की बिंदिया के लिए आया है। इस दिन बिंदिया को सजा कर लाई थी सखी आकांक्षा दुबे जी। इन्होंने कहा है कि इस दिन महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर शुरुआत की बातचीत रही, जो इन्हें बेहद अच्छी लगी। साथ ही क्रम सेहत की बात में जचकी के दौरान होने वाली समस्या, कारण और निदान पर डॉक्टर विनीता ध्रुव से भेंटवार्ता इन्होंने सुनी, जो इन्हें बहुत ज्ञानवर्धक लगी। ये संगीत भी कर्णप्रिय लगे। इन्होंने डॉक्टर विनीता ध्रुव, आकांक्षा दुबे सहित बिंदिया अनुभाग को हार्दिक बधाई

की है और ये भी लिखा है कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हमें सुनाते रहिएगा। और ये पत्र भेजा था हमारी इन सखियों ने बोरियाखुर्द से, श्रीमती गायत्री मीनू तिवारी ने। और इस दिन के कार्यक्रम को हमारे इन सखियों ने भी पसंद किया है, नर्मदा धाम सुरसुली से कविता, ममता बिंदु और सरस्वती यादव ने। सखियों, आपको क्रम सेहत की बात में विनीता ध्रुव से ली गई भेंटवार्ता पसंद आई और आपने हमें पत्र प्रेषित किया और सराहना की। वाकई ऐसे पत्र हमें नई ऊर्जा से भरते हैं कि हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के साथ अपनी प्रस्तुति लेकर आएँ। हम आपकी बधाई कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर विनीता ध्रुव के साथ आकांक्षा दुबे को भी प्रेषित करते हैं और साथ ही साथ बिंदी अनुभाग की ओर से बधाई हम स्वीकार भी करते हैं। यूं ही पत्रों का सिलसिला बनाए रखिएगा और ऐसे समीक्षात्मक पत्र हमें लिखते रहिएगा। वैसे सखियों, आपकी चिट्ठी आई का ये क्रम हम आज यहीं पर विराम देते हैं, पर बहनों पहले आप कागज़ और कलम उठा लीजिए क्योंकि हम बताने वाले हैं आपको हमारा पता। पत्र भेजने के लिए हमारा पता जो डाक के माध्यम से आप पत्र भेजेंगे वो है बिंदिया अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन नंबर है 492001। और हमारा ईमेल आईडी जिसमें आप ईमेल भी हमें ईमेल के माध्यम से अपने विचार रख सकती हैं वो है RAIAPKICHI1111@gmail.com। मैं फिर से बता दूं हमारा ईमेल आईडी RAIAPKICHI1111@gmail.com। और सखियों, आपकी चिट्ठी आई का ये क्रम आज हम यही विराम देते हैं। और सखियों, बातचीत तो चल ही रही है और बातचीत के साथ अब हम मनोरंजन की ओर पढ़ते हैं क्योंकि आज हम लाए हैं वो क्रम जो किसी एक विशेष कलाकार पर केंद्रित होता है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं क्रम एक ही कलाकार। ये केंद्रित है सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमल कल्याणपुर पर। तो सखियों, आइए बातचीत शुरू करने से पहले सुनते हैं उनका गाया ये प्यारा सा गीत।

सुमन कल्याणपुर जी का जन्म 28 जनवरी 1937 में ढाका में हुआ था। सुमन जी के पिता बैंक में शीर्ष पद पर कार्यरत थे और इसी कारण उन्होंने एक लंबा समय ढाका में गुजारा, जहां सुमन जी का जन्म भी हुआ। सुमन जी के पिता की नौकरी में समय समय पर स्थानांतरण भी हुए और इसी स्थानांतरण में उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया। यहाँ उन्होंने चित्रकला संगीत का प्रशिक्षण प्रारंभ किया और धीरे धीरे संगीत के प्रति इनकी रुचि भी बढ़ने लगी और उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा जो है वो विधिवत पूरी भी की। वर्ष 1958 में सुमन जी का विवाह मुंबई के व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर के साथ हुआ। सुमन जी के पति उनके पंखों को नई उड़ान दी और पार्श्व गायन के क्षेत्र में जो उन्होंने प्रारंभिक शुरुआत की थी उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। वैसे सुमन जी के बारे में का जो पहला हिंदी फिल्मी गीत है वो वर्ष 1954 में दरवाज़ा फिल्म के लिए गाया था। ये गीत युगल गीत था जो कि तलत महमूद जी के साथ उन्होंने गाया था। उस समय तलत साहब का नाम पार्श्व गायकी में बड़ा नाम था और उन्हें सम्मान से लोग जानते थे और जब वे एक न्यू कमर सिंगर के साथ में युगल गीत में अपनी आवाज़ें दे रहे थे तो ये उस समय की बहुत बड़ी खबर बन गई और सखियों लोगों का ध्यान सुमन जी की ओर हुआ और लोगों ने सुमन जी को नोटिस भी किया। सुमन जी के बारे में और भी बातें जानेंगे, पर उससे पहले सुनते हैं उनका गाया ये प्यारा सा गीत।

सुमन जी के सार्वजनिक गायन की शुरुआत वर्ष 1952 में ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम से हुई थी। फिर इसके बाद वर्ष 1953 में मराठी फिल्म के पार्श्व गायन, जो कि फिल्म थी शुक्राची चांदनी फिल्म से हुई। इसके बाद सुमन जी ने मराठी और हिंदी फिल्मी गीतों में पार्श्व गायिका के रूप में स्वयं को स्थापित किया। वर्ष 1960 और 70 के दशक में सुमन जी ने पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना एक बड़ा मुकाम हासिल किया। बात एक रात की, दिल एक मंदिर, दिल ही तो है शगुन, जहां आरा सांझ और सवेरा, रेशम की डोरी, साथी, राजकुमार, मोहब्बत इसको कहते हैं, गीत, जब जब फूल खिले, ये वो चंद फिल्मों के नाम हैं जिसमें उनके गाए गीतों ने लोगों को प्रभावित किया। फिल्मों की लिस्ट तो और भी लंबी है सखियों। वैसे सुमन जी ने 740 से अधिक फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाने गाए हैं। इन फिल्मी गीतों में उनके युगल गीत, जो कि मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, मुकेश, तलत महमूद और हेमंत कुमार के साथ भी है, जो कि आज भी यादगार हैं। तो सखियों, जब युगल गीत की बात हो ही रही है, तो आइए सुनते हैं सुमन जी का ये लोकप्रिय युगल गीत।

सखियों सुमन जी ने हिंदी, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, बंगाली, उड़िया, पंजाबी जैसी 11 भाषाओं में पार्श्व गायन कर अपना लोहा मनवाया। सुमन जी की इस प्रतिभा के कारण उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया। वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित भी किया गया सखियों। और इस साल 31 मई वर्ष 2026 यानी इसी साल सुमन जी ने अपनी अंतिम सांसें ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। सुमन जी के गाए गीत आज भी हर दिल में जिंदा है। शुरू की ऐसी कर्मठ साधिका को शत-शत नमन करते हुए सुनते हैं वो सुप्रसिद्ध गीत जो ये एहसास दिलाता है कि सुमन जी आज भी अपने गीतों के कारण हमारे बीच यही उपस्थित हैं।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे क्रम एक ही कलाकार, जो कि केंद्रित था सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी पर। वैसे सखियों, आज के टिप्स

0: में हम कुछ विषयों को लेकर आए हैं। जैसे पहला विषय है हमारा कि बरसात के पूर्व कपड़ों का रखरखाव। जी हाँ सखियों, उसको कपड़ों का रखरखाव रखना बेहद ज़रूरी है। बरसात के पूर्व कपड़ों को धूप दिखाएं, क्योंकि बरसात के समय कपड़ों में नमी और फंगस आ जाते हैं। ऐसे में पूर्व की गई देखभाल बेहद ज़रूरी है, जो कि हमें बीमारी से बचाती है। वैसे सखियों, बरसात के पूर्व या और बरसात के समय भी गमलों को स्वस्थ रखना भी बेहद ज़रूरी है। सप्ताह में एक या दो दिन ही पानी डालें और सूखी और ख़राब डालों को निकाल दें। समय समय पर खुदाई करें, खाद पानी भी दें और ध्यान रखें कि न ज़्यादा धूप में रहें और न ज़्यादा पानी में रहें। वैसे बहनों, बात हो ही रही है टिप्स की, तो अभी एक और बात कि छोटे और नन्हे बच्चों की देखभाल पालतू पशुओं से, वो भी बेहद ज़रूरी है। घर में पालतू पशु हों तो थोड़ी देखभाल करनी ज़रूरी है, क्योंकि नन्हे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। वैसे पालतू पशुओं की सफाई पर विशेष ध्यान दें। सफाई ना होने पर इन्फेक्शन का खतरा पशुओं को तो होता ही है, बच्चों को भी हो सकता है। जब नन्हे बच्चे पालतू पशुओं के साथ खेले तो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दोनों अबोध होते हैं। थोड़ी सी सुरक्षा, थोड़ा सा ख्याल, इनके बीच वो कड़ी स्थापित कर सकता है, जो एक अटूट बंधन में बन सकता है। वैसे सखियों, आपसे हमारा बंधन भी इस प्रकार जुड़ा हुआ है, और समय की सुइयां जो हैं वो हमें इशारा कर रही हैं कि वक्त हो चला है कार्यक्रम को समेटने का। पर जाने से पहले एक विचार कि आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। इसी के साथ दीजिए विदा और स्वीकार कीजिए आपकी अपनी बिंदिया सखी श्वेता बोरा का स्नेह भरा नमस्कार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।
2: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

फिल्म जॉनी मेरा नाम, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल स्वर में। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। आइए इस फिल्म के गीत के बाद आपको सुनवाते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और गीत लिखा है अनजान ने।

0: रूना लैला की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म घरौंदा का गीत। नक्श लयालपुरी की रचना को संगीत से सजाया था जयदेव ने। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। दोपहर के 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मंत्री इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियान पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियान, फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुँचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
4: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा

0: प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने

पर वो मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया।

0: तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।
2: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
3: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
4: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए हैं।
2: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
5: गीत मेरे होठों को
2: कभी कोई किस्सा याद आता है।

0: बहुत कुछ कहने को मन करता है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
3: सुनिए

कार्यक्रम चित्रपट में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आईना का गीत। आवाजें कुमार सानू और आशा भोसले की हैं, गीतकार हैं समीर और संगीत तैयार किया है दिलीप सेन समीर सेन ने।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बढ़ते बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगलो बताना सुमित।
0: बेरा हवा है संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

लीजिए अब सुनिए फिल्म माया मेमसाहब का ये गीत, जिसे लिखा है गुलजार ने, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का है, आवाज कुमार सानू की।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्रों से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चांदनी से। आवाजें श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की हैं। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत से सजाया है शिवहरि ने।

काम किया। तुमने मुझे बदनाम

चित्रपट संगीत में लीजिए अब सुनिए कुमार शानू और साधना सरगम की आवाजों में फिल्म दामिनी का गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में आइए अब सुनते हैं फिल्म पापा कहते हैं का ये गीत, जिसके लिए संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने और सुर और गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा में 5 बजे इसी बैंड और फ्रिक्वेंसी पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।

0: दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री फ्रिट्ज़ो से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिका की नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। भारत ने इस समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर था, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया था। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर $83 और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के दौरान पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
2: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न

0: की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। और फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

खूबसूरत समा और खूबसूरत से गीत आपकी पसंद के लेकर हम हाजिर हैं मन भवन में। मैं हूं आपके साथ रजनी और आप जुड़े हैं हमारे साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ यानी एफएम गोल्ड पर। मन भवन में आप जानते ही हैं कि आपकी फरमाइशों का ये शो है, तो आप चाहें तो अपनी फरमाइशें और अपने नाम अपने संदेश भेज सकते हैं या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है 9868868753, 9868868753, और हमारा ईमेल आईडी पे भी आप चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। और सबसे पहले जो संदेश हमें मिला है ये है महेश बोहरा का अजमेर राजस्थान से, और इन्होंने बात मौसम की है क्योंकि मौसम आजकल बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो मौसम फिल्म से इन्होंने एक गीत चुना है। प्यारा सा गीत है, आवाज़ है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। तो शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ मन भवन की।

कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं फारूक अली खां, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। अगला संदेश हमें मिला है बल्ली मारान से। भेजने वाले हैं नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद भारती और सूफिया नवाब। इनके बाद हमें संदेश मिला है सनावत से शेख मूसा मोहसिन का। और इनके अलावा जो संदेश हमें भेजा है वो है ग्राम रजौली, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और उनके सभी परिवारजनों का। और साथ ही हमें संदेश मिला है महेंद्र मोदी, ठाकुर साहब और बिहारी बाबू का। कहाँ से भेजा है ये संदेश इन्होंने? रामगढ़ कैंट से इनका पैगाम मिला और ये सुनना चाहते हैं प्यार किए जा फिल्म का गीत। तो आइए सुनते हैं, आवाज़ है मोहम्मद रफी की।

स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमें हरजिंदर भाटिया के साथ एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया का संदेश मिला। अगला पैगाम हमारे पास आया है सौराष्ट्र राजकोट से, जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी का। इनके बाद हमें संदेश भेजने वाले हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद और गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजाफर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर। इनके बाद हमें संदेश मिला है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार से इनका संदेश मिला और मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और कुमकुम कुमारी हमें संदेश भेज रही हैं। इनके बाद एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट ने संदेश भेजा और ये मुद्दत फिल्म का एक गीत सुनना चाहते हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी मुद्दत के बाद सुनाई देगा। आई मीन गीत बहुत अच्छा है लेकिन कम सुनने में आता है, तो ये गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोंसले और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में।

जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह हमें सुन रहे हैं। इनके बाद हमें संदेश मिला।

सी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना हमें सुन रहे हैं। इनके बाद हमें जो पैगाम आया है वो है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से, और भेजने वाले हैं सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वद देशमुख, प्रणाली देशमुख, खानवी देशमुख और कल्पना देशमुख। इनके बाद संदेश हमें मिला है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का, और छीपा कॉलोनी खंडवा से हमें संदेश मिला है मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और यूसुफ खत्री का। इनके बाद हमें संदेश पहुंचा है गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी और पुष्पेंद्र कुमार दूधी का। और इनके बाद हमें एक बहुत ही प्यारी सी कई पंक्तियां हमें लिखकर भेजी हैं, और ये भेजने वाले हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, इन्होंने अपना पूरा नाम नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, इनका गीत हम आपको सुनवाते हैं जो इन्होंने फरमाइश भेजी थी। ये है जो गीत सुनना चाहते हैं शोर फिल्म से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार और रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा ने।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
5: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
6: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
5: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
6: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
9: किसी

0: एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: इस ब्रेक के बाद जारी है आपका अपना मन भावन आपके अपने एफएम गोल्ड पर। संजय पाटिल, उषा पाटिल मलकापुर से संदेश भेजते हैं और कह रहे हैं कि छड़ी रे छड़ी जिस गीत से आज मन भावन की शुरुआत हुई वो बहुत बढ़िया लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके अलावा हमें संदेश मिला है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना और आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा का पैगाम मिला। इनके बाद शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का पैगाम मिला। अगला संदेश भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार का, और गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार, सारिका और वेदिका ने भेजा संदेश। भवानीगढ़ संगरूर से परविंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और हरप्रीत कौर ने संदेश भेजा। इनके बाद रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज हुसैन सिद्दीकी, रिफाकत हुसैन सिद्दीकी जसपुर उत्तराखंड से संदेश भेज रहे हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी, निकत प्रवीण अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अबान अब्बास ऊपरकोट बुलंद शहर मोहल्ला चौखुंडी से संदेश भेजते हैं। इनके बाद हमें संदेश भेजने वाले हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, और ये सुनना चाहते हैं हीरा पन्ना फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। लीजिए, आपके लिए पहुंच रहा है ये बहुत ही लोकप्रिय गीत, फिल्म हीरा पन्ना।

अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है स्वरूप आनंद सरजाल जौड़ा पीपल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से इनका संदेश हमारे पास आया है। इनके अलावा हमें संदेश मिला है समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता श्रद्धा गुप्ता अदिति गुप्ता राधे गुप्ता दीपक गुप्ता अंकुर राघव गुप्ता का और पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता ने भी संदेश भेजा। साथ ही हमें पैगाम मिला है जगदीश कुमार राहुल रितिका और ये हमें संदेश भेज रहे हैं नांगलोई से। इनके अलावा हमें संदेश भेजने वाले हैं रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता और डिम्पल देवांगन बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। अगला पैगाम हमें मिला है गांव खावरी अव्वल से भेजने वाले हैं चौधरी राजवीर सिंह और ये गहरा दाग फिल्म का एक गीत सुनना चाहते हैं तो आइए ये गीत आपको सुनवाते हैं। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

डीबी राणा नेहरू विहार दिल्ली से हमें संदेश भेज रहे हैं। इनके बाद संदेश भेजने वाले हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। इनके बाद जो संदेश हमारे पास आया है ये है किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु का, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। अगला संदेश जॉन टिकेस्ट्रो, रोजी टिकेस्ट्रो, पर्ल टिकेस्ट्रो और विलिस टिकेस्ट्रो ने भेजा है जनकपुरी सहारनपुर से। और इनके बाद हमें सुन रहे हैं ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। और ये कारवां फिल्म का एक गीत सुनना चाहते हैं जिसमें आवाज़ है लता मंगेशकर और आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की।

और अब आगे बढ़ते हैं, कई सारे संदेश और हम तक पहुंचे हैं। ये संदेश हमें मिला है अनीता वर्मा प्रीतमपुरा दिल्ली से संदेश भेज रही हैं। इनके अलावा मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम पटेल, देवी किशन, भावना मन, मानस और कनिका पटेल ने हमें संदेश भेजा। और इनके बाद हमें रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से पैगाम मिला लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। और ये सुनना चाहते हैं दो रास्ते फिल्म से ये गीत।

0: कभी।
1: और इसी गीत के साथ मन भावन को समेटने का वक्त आ चला है, तो मुझे दीजिए इजाजत मन भावन से, मुझे यानी रजनी को, और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। कुछ ही देर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को सुधारना होगा।
1: वैश्विक मंच पर भी भारत और स्लोवाकिया करीबी सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को रीडिफाइन करना होगा। इस विषय पर हम वैश्विक प्रयासों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे।
0: इस अवसर पर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने ब्रातिस्लावा में द्विपक्षीय वार्ता की। इस अवसर पर श्री रॉबर्ट फिको ने भारत द्वारा हासिल की गई आर्थिक वृद्धि की सराहना की। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। भारत ने समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में जोरदार उछाल देखा गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर $83 और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मुनीम जी से अगला गीत आपको सुनवाते हैं, आवाज है आशा भोसले की।

0: चुका है,
1: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
7: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर इस ब्रेक के बाद आइए सुनते हैं भूत बंगला फिल्म का गीत, आवाज है मन्ना डे की।

0: academic staff, PGTs, TGTs, librarian and medical officer, administrative posts and coaches. Selection will be through written tests, skill class demonstration and walk-in interviews scheduled on 18th and 19th June 2026. Detailed eligibility for all the vacancies and application forms available on the official website. Do refer to www.ssgopalganj.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना 10+2 बीटेक कैडेट प्रवेश योजना स्थायी कमीशन पाठ्यक्रम जनवरी 2027 के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। यांत्रिक अभियांत्रिकी शाखा में 30 रिक्तियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी में भी 30 रिक्तियां हैं। महिलाओं के लिए अधिकतम 8 रिक्तियां हैं। यांत्रिक अभियांत्रिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी के लिए 4-4 रिक्तियां रहेंगी। आयु 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच जन्मतिथि होनी चाहिए। किसी भी उम्मीदवार द्वारा इस पाठ्यक्रम के लिए एक से अधिक आवेदन नहीं करना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। प्रक्रिया का पूरा विवरण जानने के लिए देखिए भारतीय नौसेना की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in। संघ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों के लिए 98 रिक्तियों की सूचना प्रकाशित की है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 13 से 19 जून 2026 का रोजगार समाचार पत्र। चयन सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा और इसके लिए विस्तार से जानकारी आप देखिए संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट upsconline.nic.in पर। रमन अनुसंधान संस्थान सदाशिव नगर बेंगलुरु RRI भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और उपलब्धियों वाले प्रतिष्ठित शिक्षाविदों शोधकर्ताओं से निदेशक पद के लिए प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा और संस्थान पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण भी उसी का होगा। ये पद भारत सरकार के संशोधित वेतन नियम 2016 के अनुसार वेतन स्तर 17 के उच्चतम पैमाने अर्थात 2,25,000 रुपए प्रति माह का वहन करता है। आवेदन नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 है। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए रामन अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट www.rri.res.in/careers/regular-other-openings। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। चिकित्सा अधीक्षक एक पद, अधीक्षण इंजीनियर एक पद, कार्यकारी इंजीनियर एक पद, लेखाधिकारी एक पद। आवेदन का प्रारूप, पात्रता मानदंड और अन्य विवरण जानने के लिए देखिए वेबसाइट aimsnagpur.edu.in। सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश अपने कृषि विज्ञान केंद्र के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक सह प्रमुख पद हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पदों की संख्या 1 है। आवेदन की अंतिम तिथि रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने से 21 दिन है। रोजगार समाचार पत्र में ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ है 13 से 19 जून 2026 के अंक में। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.shuats.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम

0: आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
0: नमस्कार दोस्तों।

0: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं दोस्तों शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, फिर चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और उनसे जानेंगे क्या कुछ है विशेष उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहती है बराबर हमारी नजर, और दोस्तों हम याद करेंगे हर रोज की तरह उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों परिक्रमा के इस अंक के साथ आज मैं हूं मुनीष शर्मा और हमारे साथ हैं सायरा मुश्तबा। नमस्कार सायरा।
1: नमस्कार मुनीष, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स एज वेल हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, मुनीष ने ऑलरेडी बता ही दिया है कि क्या कुछ होगा हमारे आज के शो में, बिकॉज ऑफ कोर्स द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, सो वील डू द परिक्रमा ऑफ द कंट्री, वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स वेयर आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स प्रोबब्ली हैज सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू शेयर, जो मुनीष हम लोग अपने न्यूज बुलेटिन में कई बार उनको नहीं शामिल कर पाते, बट दिस इज वाई वी आर हियर एवरी डे फॉर हाफ एन आवर to give a perfect wrap to your day, and all of that in the roughly next half an hour. Let's start with the headlines first. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today.
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे।
1: India welcomes peace deal between Iran and US, says it will help restore peace and stability in the region.
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया।
1: यूनाइटेड किंगडम अनाउंसेस सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन अंडर 16।
0: और दोस्तों फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला होगा काबो वर्दे से।
1: And yes, we throw open Parikrama every day with our segment Dateline India, in which we take a look at the developments that are taking place. And today we are going to talk about Global Wind Day. Yes, we're going to talk about a sector that's helping India harness the power of nature, that is the wind energy. Global Wind Day is being observed today.
0: दोस्तों हर साल 15 जून होती है वो तारीख जब दुनिया भर के देश मनाते हैं ग्लोबल विंड डे, ताकि पवन ऊर्जा और एक साफ सुथरे और हरे भरे भविष्य के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।
1: That's right, Munish. Wind energy is one of the fastest growing renewable energy sources globally. It helps reduce dependence on fossil fuels and plays a significant role in combating climate change as well.
0: और सायरा जब हम रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं जिसे, जब उसके बारे में सोचते हैं तो अक्सर सबसे पहले सोलर पावर का ख्याल आता है, लेकिन विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा भी चुपचाप उल्लेखनीय प्रगति कर रही है और भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्तंभ बनती जा रही है।
1: Very rightly said, Munish. In fact, here's an impressive fact to start with, that India currently ranks 4th in the world in installed wind power capacity.
0: और दोस्तों ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिससे पता चलता है कि भारत न सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश कर रहा है बल्कि विंड पावर सेक्टर में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर लगातार उभर रहा है।
1: Absolutely, but what's even more encouraging, Munish, is that the growth isn't just happening through imports or foreign technology.
0: बिल्कुल सायरा, देखो भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र ने मुख्य पुर्जों के मामले में लगभग 70-80% स्वदेशीकरण तो हासिल कर ही लिया है।
1: That means a large portion of the equipment and technology used in wind turbines is actually being manufactured right here in India itself.
0: और ये अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र दोनों के लिए एक बड़ी जीत है। दोस्तों इससे आयात पर निर्भरता कम होती है और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलता है।
1: That's right. Speaking of domestic industries, India has developed strong supply chains for critical wind energy components.
0: ये बिल्कुल सही कहा आपने सायरा। देखिए ब्लेड्स यानी ब्लेड्स का इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में हम करते हैं, और गियर बॉक्स आदि जो अन्य जरूरी उपकरण हैं जैसे पार्ट्स का उत्पादन अब देश के भीतर बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।
1: Which means that Indian manufacturers are playing a key role in powering the nation's renewable energy ambitions, isn't it?

0: गुड्स, एंड इससे देखिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, इनोवेशन को बढ़ावा मिल रहा है और भारत का जो उत्पादन क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग यानी इकोसिस्टम जो है वो मजबूत होता है.
1: But Monish, some people think that wind energy is unpredictable. Has that perception changed over the years?
0: बिल्कुल ऐसा हुआ है. देखिए टेक्नोलॉजी में तरक्की, बेहतर फोरकास्टिंग सिस्टम और ग्रिड इंटीग्रेशन में सुधार ने विंड एनर्जी को भारत के पावर सिस्टम का कहीं ज्यादा स्थिर और एक भरोसेमंद हिस्सा बना दिया है.
1: तो ये कहा जा सकता है मुनीश, दैट विंड एनर्जी इज नो लॉन्गर जस्ट एन ऑल्टरनेटिव सोर्स, इट्स बिकमिंग एन इंटीग्रेटेड कंपोनेंट ऑफ आवर एनर्जी मिक्स.
0: बिल्कुल सायरा, दरअसल ये भविष्य उम्मीद जगाने वाला है. लगातार तकनीकी सुधारों और अलग अलग इलाकों में इसके और ज्यादा इस्तेमाल के साथ उम्मीद ये है कि पवन ऊर्जा का योगदान और भी बढ़ेगा.
1: And well, this year's observance of Global Wind Day is particularly significant for India. Today, India is hosting the Global Wind Day 2026 conference in Goa under the theme Wind Energy from Ambition to Acceleration.
0: और ये एक प्रेरणादायक विषय है, जिससे पता चलता है कि हमने भले ही नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बड़े लक्ष्य तय किए हों, लेकिन अब हमारा ध्यान काम में तेजी लाने और उन लक्ष्यों को हकीकत में बदल देने पर है.
1: Absolutely, Munish. The conference is bringing together government representatives, regulators, wind energy developers, manufacturers, industry leaders and experts from across the sector.
0: मुझे लगता है सायरा की एक बड़ी जबरदस्त सभा होगी. लेकिन इसमें किन मुख्य विषयों पर चर्चा की योजना है?
1: Well, the event features plenary sessions and panel discussions aimed at identifying practical measures to speed up wind energy deployment, improve project execution and strengthen India's domestic manufacturing capabilities.
0: ये जरूरी है क्योंकि साफ ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए न सिर्फ पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत होती है, बल्कि मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और लागू करने वाले इकोसिस्टम की भी जरूरत होती है.
1: Exactly, Monish. The conference also highlights several priorities shaping the next phase of India's wind energy journey. These include resource adequacy, manufacturing competitiveness, export opportunities and technological advancements.
0: और अब हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा नन्ना सा सवाल. क्या आपने कभी असल में विंड टर्बाइन को देखा है? वो बड़े बड़े घूमते हुए ब्लेड्स भले ही साधारण लगे, लेकिन वो प्रकृति की ताकत का इस्तेमाल करने वाली अत्याधुनिक तकनीक का उदाहरण है.
1: And every rotation brings us one step closer to a cleaner future. Wind energy produces electricity without emitting greenhouse gases during operation, making it a crucial tool in addressing climate change. We have a report.
2: As wind energy sector is expanding steadily with rising installed capacity and strong wind resource potential across key states, it is increasingly supported by domestic manufacturing and its role in meeting renewable energy targets. To strengthen the sector, the government has introduced several initiatives including competitive bidding, renewable purchase obligations, the repowering policy, national offshore wind energy policy and measures to boost domestic manufacturing. And today, India stands as the world's fourth largest wind power market. Installed wind energy capacity in the country has increased from just over 21 gigawatts in 2014 to more than 56 gigawatts by March this year, while an additional 28 gigawatts are under implementation. The country also recorded its highest ever annual wind capacity addition of over 6 gigawatts in 2025-26. Wind turbine manufacturing capacity has more than doubled to around 24 gigawatts, with 70-80% indigenization achieved across key components. Additionally, more than 900 wind monitoring stations have also been set up across the country to identify high potential sites. With a target of achieving 100 gigawatts of wind capacity by 2030, wind energy is expected to play a major role in India's goal of 500 gigawatts of non-fossil fuel capacity and net zero emissions by 2070. Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
0: दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर जोर दिया है. आकाशवाणी पर अपने रेडियो संबोधन मन की बात में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत देश के कई राज्य इस क्षेत्र में एक नई राह दिखा रहे हैं.
3: आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है. भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है. पिछले एक

0: साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है। विंड एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है।
1: जैसे जैसे भारत अपने एनर्जी ट्रांसमिशन यानी ऊर्जा बदलाव के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, भरोसेमंद, सस्ती और घरेलू स्तर पर उपलब्ध स्वच्छ बिजली पहुंचाने में पवन ऊर्जा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी। देश के पास जमीन और समुद्र दोनों ही जगहों पर पवन ऊर्जा के विशाल संसाधन हैं, जो लंबे समय तक विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। लेकिन इस अवसर का पूरा फायदा उठाने के लिए प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने, बेहतर फोरकास्टिंग क्षमताएं विकसित करने और लगातार पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत तो होगी, क्यों साहब?
2: एब्सोल्युटली मनीष, बाय एक्सपैंडिंग इनटू न्यू जियोग्राफीज, इंटीग्रेटिंग विंड विद स्टोरेज एंड राउंड द क्लॉक पावर सॉल्यूशंस एंड स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस, इंडिया कैन पोजीशन विंड एनर्जी नॉट ओनली एज अ की कंट्रीब्यूटर टू इट्स क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी गोल्स बट ऑल्सो एज अ ड्राइवर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ।
1: और दोस्तों, आज जब हम ग्लोबल विंड डे मना रहे हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा न सिर्फ पर्यावरण के लिए जरूरी है बल्कि एक आर्थिक अवसर भी है, है ना?
2: And before we proceed, Monish, a very important announcement that in our bilingual live phone-in program tonight, in the program Public Speak at 9:30 p.m., we will bring an insightful discussion on benefits of yoga for preventive health and well-being with Anita Kaushik and Kamal Kishore, who are yoga experts. During the program, listeners can also ask questions on the subject. To participate, simply dial telephone numbers 011-2331-0481. There are other numbers as well: 011-2371-7117, 011-2371-7106, and 011-2331-4444. So don't forget, at 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044, or post your queries on X with the hashtag Ask AIR.
1: और दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है खास उनके पास। फ्रांस का खूबसूरत शहर एवियों इन दिनों G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर का भारत के साथ एक बेहद अनूठा और ऐतिहासिक रिश्ता भी है। दरअसल, वैश्विक मंच पर भारत के महाशक्ति बनने के सफर की एक बड़ी खास कड़ी इस जगह से जुड़ी है। तो चलिए सीधे चलते हैं एवियों, जहां से हमारे संवाददाता अंकित कुमार इस खास रिपोर्ट के साथ जुड़ रहे हैं।
3: एवियान के इन सर्द हवाओं का भारत के राजनयिक इतिहास से बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है। आज से करीब 23 साल पहले यानी साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसी शहर में G8 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वह इस ताकतवर वैश्विक मंच पर भारत की पहली ऐतिहासिक मौजूदगी थी। उस दौर में भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था था, जो वैश्विक पटल पर अपनी आवाज को मजबूती से रखने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। समय का पहिया घूमा और आज हम पहुंच चुके हैं साल 2026 में, और आज की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियान की उसी धरती पर कदम रखेंगे तो भारत की मौजूदगी केवल एक साझेदार देश तक सीमित नहीं होगी। आज भारत वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से दुनिया के सामने रख रहा है। फ्रांस में ही यहां से महज कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर आयोजित भारत इनोवेट्स की सफलता भारत की इसी विकास यात्रा की एक सशक्त मिसाल है। यह दर्शाती है कि भारत अब केवल वैश्विक विमर्श का हिस्सा नहीं बल्कि उसे दिशा देने वाले प्रमुख देशों में भी शामिल है। साल 2023 से 2026 तक के इस सफर में एवियान भारत की प्रगति, उसके बढ़ते आत्मविश्वास और वैश्विक नेतृत्व का गवाह रहा है। आज भी यहाँ की शांत और खूबसूरत लेक लेमा वैसे ही अटल खड़ी है, लेकिन दुनिया की नजरों में भारत का कद एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। परिक्रमा के लिए एवियान फ्रांस से मैं अंकित कुमार।
1: दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 18 जून को आयोजित होने वाले बोंजो मोदी कार्यक्रम में राजस्थान की लोक संस्कृति की एक बड़ी ही अनूठी छटा देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए भारतीय दूतावास ने रईस भारती

0: के नेतृत्व वाले प्रसिद्ध जिप्सी बैंड का चयन किया है। और अधिक जानकारी लीजिए, सुनिए हमारे संवाददाता से।
1: पेरिस के ऐतिहासिक साल प्लेयर सभागार में कालबेलिया नृत्य, लंगा मांगनियार गायन और पारंपरिक ब्रास बैंड की प्रस्तुति होगी। दाढ़ी, दमामी तथा राणा समुदायों के कलाकार भी ग्रुप में शामिल है। 20 सदस्यीय यह दल पिछले 26 वर्षों से दुनिया भर में भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहा है और 119 से अधिक देशों में प्रस्तुति दे चुका है। इस अवसर पर आकाशवाणी से बोलते हुए रईस भारती जी ने कहा,
2: मुझे बहुत ही गर्व और खुशी हो रही है, हमारे भारतीय दूतावास पेरिस 18 जून को मोदी कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। यह अवसर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत समारोह पेरिस साल क्लियर में होने जा रहा है। जैसे कि पिछले 26 वर्षों से बोध ग्रुप राजस्थानी कला और संस्कृति को विराट समारोह में और कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
1: भारतीय संस्कृति की यह रंगारंग झलक पेरिस में भारत की समृद्ध लोक विरासत को नई पहचान देगी। परिक्रमा के लिए महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
3: And well, Monish, the curtains for the 19th Mumbai International Film Festival, or MIFF, will rise today. The formal opening ceremony will be held at Mumbai's Rabindranath Tagore in the evening, whereas the screenings of films will begin from the morning itself. This year, the competition section comprises 144 films, including 52 international and 92 national entries, representing filmmakers from 13 countries, whereas the non-competition section will feature a total of 202 films, including 106 international titles and 96 national films from 46 participating countries. Let's hear more from our correspondent.
4: MIFF, the much-awaited biennial film festival for non-feature films, will open with the animated work Good Luck to You All, directed by Caudal Barker, the short fiction Agapito, directed by Arvind Bellarmino and Kayla Daniel Romero, and the documentary Time and Water, directed by Sara Dosa. Master filmmaker David Attenborough will be honored with the screening of his two films under centenary tribute. The 19th MIFF will also feature 10 masterclasses and 5 open forum discussions. This year's edition has also introduced two newly curated sections, Marathi Films and Echoes from Northeast. The Waves Dock Bazaar section will feature a total of 155 entries this year, along with 5 projects in the Work in Progress Lab and 12 films under Film Bazaar Recommends, with the viewing room hosting all 155 films for industry access and evaluation. The section will also facilitate robust B2B networking opportunities. For the first time, MIFF will host an AI cinema hackathon titled Mumbai Through a Thousand Eyes, a 48-hour global filmmaking challenge exploring AI-driven storytelling. The festival will confer 18 awards across international and national competition categories, carrying a total prize money of rupees 45 lakh along with trophies and certificates. Ankita Apte, Akashwani News, Mumbai.
0: और सायरा, ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव यानी राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और हमारे संवाददाता ने तो हमें यह भी बताया कि सभी आयु वर्ग के लोग बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
5: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पीठा, अरीसा पीठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: And now we head to the northeast. Well, Meghalaya's Farmers Market, which is a platform to help connect farmers from across Meghalaya, was held with their urban consumers, locals as well as tourists. The June edition showcased the season's highlights, that is pineapples, tomatoes and radishes, apart from the greens and other local delicacies. It sounds very mouth-watering to me, Monish. I can't hear to, you know, listen to hear more from our correspondent.
6: The 6th edition of Meghalaya's monthly farmers market was held in Shillong. Stalls lined with fresh vegetables, fruits, honey, bamboo shoots and local delicacies drew crowds of residents eager to connect with the people behind the produce. The June edition of the farmers market featured pineapples, tomatoes and radishes, which were the season's highlights. It brought farmers, producer groups and consumers together at one spot to showcase fresh local produce from across Meghalaya.

0: Kalaya. Farmers from across the state showcased their harvest, selling everything from organic greens to traditional food products, bypassing middlemen and reaching consumers directly. The market is a celebration of community and a platform that supports local livelihoods. It provides farmers with direct market access and an opportunity to connect with consumers. For many, this monthly gathering has become a regular way to enjoy fresh, locally grown produce while also learning about the agricultural heritage of the state. The farmers market has built a sizable fan base with regular buyers thronging the event every month. This initiative provides ample opportunities for residents and tourists alike to explore Meghalaya's produce. With initiatives like these, the state government aims to strengthen farmer-consumer connections and encourage sustainable agriculture. As the day winds down, the market leaves behind a sense of community and pride in the state's rich harvest. For Parikrama, Anumita Das, Akashvani, Shillong.
1: सोमवती अमावस्या के अवसर पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था और श्रद्धा का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। अधिमास में पड़ने वाली इस विशेष सोमवती अमावस्या पर देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी सहित गंगा के विभिन्न घाटों पर पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना दान पुण्य और पितरों के निमित्त तर्पण किया। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने हमें बताया कि स्नान पर्व के दौरान सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सभी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है।
2: लगभग 12 बजे से हमारा स्नान शुरू हो गया था और अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं, काफी ट्रैफिक आ रहा है, तो उसमें यह है कि जो हमारी पार्किंग स्कूल की जैसे जैसे स्पेस बन रही है, हम नए वाहनों को उसमें ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त SDRF NDRF की टीमें लगी हैं जो कि कोई डूबने घटना अगर होती है उसको देखने के लिए। इसके अलावा सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में ATS, BDS, डॉग स्क्वाड और इसमें काफी संख्या में हमारे जो है AP, CP और ट्रैफिक पुलिस के जवान लगे हुए हैं, तो पुलिस पूरी तरह गियर अप है। प्रयास रहेगा कि श्रद्धालु अपना अच्छे से स्नान करें, अपने गंतव्य को प्रस्थान।
3: And yoga enthusiast Hawk Hawk. Well, marking the formal commencement of the grand celebration of International Day of Yoga 2026, the Ministry of Ayush hosted the curtain raiser for the 12th International Day of Yoga in New Delhi today. Union Minister Pratap Rao Jadhav addressed the media and said that the main event will be led by Prime Minister Narendra Modi at Red Road in Kolkata. The minister also said that a 45-minute yoga protocol will be conducted on the occasion. Parallel to the main event, Shri Jadhav said that it is planned that yoga sessions will be conducted on 500 boats on the Hooghly River.
4: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: और दोस्तों, आइए अब आपको ले चलें खेल के मैदान में और जानते हैं क्या है वहां की हलचल। फीफा विश्व कप 2026 में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शुरू होगा रात 9:30 बजे से।
3: And now, Monish, we all know that with the announcement of the final deal being between, you know, the US and Iran, so market ke sentiment bahut acche aaj dekhne ko mile. Benchmark domestic equity indices ended today's trading session with strong gains of nearly 1%. Investor sentiment improved following the announcement of the peace agreement. The Sensex surged 736 points to close at 76,264, while Nifty jumped 231 points to settle at 23,850. For more updates about market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
1: और आइए अब हम याद करें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को, बात करें उन महान व्यक्तित्वों की है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन।
5: We remember freedom fighter Sirbandhan. He was in the service of the English East India Company Army, but left it during the First War of Independence in 1857 and also motivated his fellow sepoys to leave their service and take part in the struggle for freedom from the oppressive foreign rule.
6: He fought the company on several occasions and was finally caught in an encounter, charged

0: चांदनी।
1: और श्रोताओं अब दीजिए हमें इजाजत, ही कार्यक्रम समाप्त।
2: मीडियम वेव 305.8 मीटर्स यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 102

98.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे ही सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफनगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा, जवाखाण, अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये सकालो, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, किशुनपुर, जमीरा, डांडपारा, दांतीढाब, घटगांव, बरवाली, कंडराजा, बरिमा, पेंट, घोड़ा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, साजापानी, कुदरा झरिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 101 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछा, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलारगढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमाटिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राठरोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरीत, तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने

0: वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें।
1: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: हमर हाथी हमर गोठ ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स स्कैन रात 8:30 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युववाणी कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर आजकल का विषय होगा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। विज्ञान मंच में सुनिएगा वार्ता AI की दुनिया। वार्ताकार होंगी अक्षदा मातुरकर और सुनिएगा श्यामी गजल। शाम 6:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी अमृता नंदी और इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगी सीमा दत्ता। चौपाल शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा खरीफ फसल माँ उन्नत बीज के चुनाव। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे विदेश नीति पर केंद्रित कार्यक्रम। पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम शुरू का सफर रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग सोहनी। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:00, रात 8:00, रात 9:15 पर। ये थी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। और आइए अब आपको बता दें हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स कैन कल रात 8:30 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर कल सुबह 7:05 पर प्रस्तुति होगी अंकुर शुक्ला की। कल सुबह 8:30 पर मोर भुइया कार्यक्रम में हमारे संस्कृति हमारे साहित्यकार में वरिष्ठ साहित्यकार सुरजित नवदीप ले समीर शुक्ला की गोठ बात आप सुनेंगे। रंग तरंग में कल सुबह 9:00 सुनिएगा झलकी। नीम हकीम खतराए जान लेखिका होंगी श्रीमती आशा सोनी प्रस्तुति समीर शुक्ल की। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:40 पर और कल रात 8:15 पर कलाकार होंगे पुराणिक साहू और साथी। समूह गान शिक्षा कल सुबह 11:05 पर भाषा होगी कन्नड़ और उसके पश्चात आप सुनेंगे सुगम संगीत। 11:30 पर सुनिएगा सदाबहार नगमे। कल दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम होगा आप मन की गीत। घर आंगन कार्यक्रम 1:30 पर आज की गोठ का विषय होगा प्रवासी मन के आर्थिक सहयोग और परिवार। सुनिएगा डॉक्टर इंद्राणी साहू का कविता पाठ और दादी माँ के नुस्खे और होगा गीत संगीत। युववाणी कल शाम 5:10 पर अपन गोठ का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। सुनिएगा सवाल जवाब और माटी के गीत। कल शाम 7:21 पर चौपाल में आज की बात का विषय होगा सोयाबीन की उन्नत और वैज्ञानिक खेती। 7:30 पर किसान वाणी में सुनिएगा हेलो किसान वाणी। विषय होगा मानसून के पूर्व में पशुओं में होने वाली बीमारियों की पहचान बचाव और उपचार तथा टीकाकरण का महत्व। इस विषय पर डॉक्टर KL राम अतिरिक्त उप संचालक शासकीय पशु चिकित्सालय मांडर देंगे जानकारी। प्रस्तुत करता होंगे शशि प्रकाश पांडे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम कल रात 9:25 पर। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद कल रात 10:00। कल रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित राजन साजन मिश्र का गाया राग यमन में ख्याल। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर कल सुबह 10:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय होगा दोपहर 12:00 और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय होगा कल शाम 5:00। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र।

0: तो अपेक्षा जरा गौर फरमाना, उम्र बिता दी जिन्होंने बच्चों की फिक्र करने में, वही बच्चे अब व्यस्त हैं उनकी कमियों का जिक्र करने में।
1: क्या बात है, बड़े कटाक्ष दे रही हो आज से तुम।
0: अरे कहा, मैं तो बस हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण और बेहद खास व्यक्तित्व के मन का बयान या जिक्र कर रही थी।
1: अच्छा जी, मैं समझ रही हूँ कैरल, तुम किन की बात कर रही हो।
0: सच में बताओ जरा।
1: वो ढला सा शरीर, चेहरे पर झुर्रियां, बालों में अनुभव की सफेदी, आंखों में मासूमियत और ढेर सारा प्यार।
0: बिल्कुल सही कहा अपेक्षा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर हमारे प्यारे चहेते और माननीय बुजुर्गों की। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना खास कार्यक्रम युववाणी, मेरे यानी कैरल पांडे
1: और मेरे यानी अपेक्षा शुक्ला के साथ। तो स्वीकारे हमारा प्यार भरा नमस्कार। अच्छा एक बात बताओ कैरल, बचपन में जब मम्मी पापा की डांट पड़ती थी तो सबसे पहले बचाने कौन आता था?
0: दादी नानी।
1: और माँ की मार पड़ती थी तो
0: नानी। पता है क्यों?
1: क्यों?
0: क्योंकि माँ ऐसा मारे कि नानी ही याद आ जाए।
1: बिल्कुल सच कहा तुमने। और जब तुम्हारे जेब खर्च को पैसे कम पड़ते थे तो तुमने क्या किया?
0: मैंने कहा, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, नानी जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे।
1: वाह वाह वाह, तो क्या तुम्हें भी लगता है कि नाना नानी दादा दादी के पास कोई जादुई शक्ति होती है?
0: हाँ बिल्कुल होती है। उनके पास जाते ही सारी समस्याओं का हल हो जाता है और शांति ही शांति मिलती है।
1: दादा दादी और नाना नानी हमारे गुप्त सहायक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: है ना। और जब सारी दुनिया तुम्हारी गलती निकाल रही हो ना, तब वे कहते हैं, अरे बच्चा है सीख जाएगा।
0: क्या बात है, वाकई इस पूरी दुनिया में उनके जैसे लाड और प्यार का कोई मोल नहीं है। बेशक, पर अजीब बात है ना, बचपन भर हमें ऐसा लगता था कि वो हमारे हमेशा साथ रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: और हमें सभी परेशानियों से बचा लेंगे।
1: पर हम वक्त को समझते ही नहीं थे, और उस समय हमें बस इतना समझ आता था कि हमें कोई कहानी सुनाने वाला है, डांट से बचाने वाला है, और कोई बिना वजह ढेर सारा प्यार करने वाला है।
0: और बड़े होते होते कितना कुछ बदल जाता है ना।
1: वाकई
0: बचपन में जिनके बिना एक दिन भी हम काट नहीं पाते थे, बड़े होकर हम उन्हीं के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि शायद हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती है दोस्तों। हम हमारे अपने और बुजुर्गों से ज्यादा मोबाइल और काम के साथ समय बिताने लगते हैं।
0: सच कहा अपेक्षा। कहते हैं कि पेड़ जितना पुराना होता है उसकी जड़ें उतनी मजबूत होती
1: हैं। वाकई,
0: और परिवार के बुजुर्ग वही मजबूत जड़े होते हैं। कहते हैं जिस परिवार में बुजुर्गों की मौजूदगी और आशीर्वाद हो, वो बहुत ही आदर्श, संपन्न और खुशहाल परिवार होता है।
1: कई बार बहुत से बच्चे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर बाहर रहने लगते हैं, और देखते ही देखते उनसे मिलने जुलने का और फिर बातचीत सब कुछ कम कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि बच्चों को उनके दादा दादी नाना नानी का प्यार दुलार और सीख कितनी ज़रूरी है।
0: और सिर्फ नन्हे बच्चे ही नहीं अपेक्षा, घर छोड़े हुए या बाहर रहने वाले या साथ रहने वाले हर उस बच्चे को अपने माँ बाप का साथ और आशीर्वाद बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: फिर चाहे वे बुजुर्ग ही क्यों ना हो जाएं।
1: बिल्कुल,
0: और आज हमें सुन रहे सभी श्रोताओं से मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी। किसी

0: बुजुर्ग से, क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने अपने घर के किसी बुजुर्ग से सिर्फ उनका हाल चाल पूछने के लिए कब बात की थी? अगर याद नहीं तो शायद आज के विषय के माध्यम से आप जागरूक हों और आज ही अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता दादा दादी नाना नानी की तबीयत का ख्याल करना शुरू कर दें और उनका हाल चाल लेना भी।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें यही याद दिलाता है कि बुजुर्गों का सम्मान केवल संस्कार नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। उनकी सेहत, उनकी सुरक्षा, उनकी भावनाएं, इन सब का ध्यान रखना हम सब का कर्तव्य है।
0: दोस्तों, बुजुर्ग हमारे अतीत की विरासत हैं, वर्तमान का मार्गदर्शन है और भविष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। उनका आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो अपने बड़े बुजुर्गों का अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि वे हमारी सबसे कीमती धरोहर हैं।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
4: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
5: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
4: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
5: 47 सालों से निरंतर सेवा में
4: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
6: साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर और सुनते हैं क्रम विज्ञान मंच में वार्ता AI की दुनिया। वार्ताकार हैं अक्षदा मातुरकर।
7: नमस्कार आदरणीय श्रोतागण, आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं, जो वर्तमान समय में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और भविष्य की दिशा तय कर रहा है। ये विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। आज के युग में तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। सुबह अलार्म से लेकर रात तक मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन खरीदी और डिजिटल सेवाओं का उपयोग हम सभी करते हैं। इन सभी तकनीकों के पीछे जिस शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है, वह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सबसे पहले ये समझते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। सरल शब्दों में कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से मशीनों और कंप्यूटरों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे मनुष्यों की तरह सोच सके, सीख सके, निर्णय ले सके और समस्याओं का समाधान कर सके। अर्थात ऐसी बुद्धि जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हो, उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। आज हम सभी किसी न किसी रूप में AI का उपयोग कर रहे हैं। जब हमारा मोबाइल फोन हमारी आवाज पहचानता है, जब YouTube हमारी पसंद के वीडियो सुझाता है, जब Google मैप हमें सही रास्ता बताता है, तब वास्तव में AI ही काम कर रहा होता है। श्रोतागण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विचार नया नहीं है। कई दशक पहले वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनों की कल्पना की थी जो मनुष्य की तरह सोच सके। लगातार अनुसंधान और तकनीक विकास के कारण आज ये कल्पना वास्तविक बन चुकी है। वर्तमान में AI शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बैंकिंग, परिवहन और प्रशासन जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो AI डॉक्टरों की सहायता कर रहा है। ये रोगों की पहचान करने, मेडिकल रिपोर्ट का विश्लेषण करने तथा उपचार की बेहतर योजना बनाने में मदद करता है। कई बार AI ऐसी सूक्ष्म जानकारियों को भी पहचान लेता है जिन्हें सामान्य रूप से देख पाना कठिन होता है। इससे रोगों का समय रहते पता लगना संभव हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी AI नई क्रांति ला रहा है। अब विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार सीख सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म छात्रों की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा रहा है। इससे शिक्षा अधिक सरल, रोचक और प्रभावी बन रही है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में AI का महत्व और भी बढ़ जाता है। कृषि क्षेत्र में AI मौसम की जानकारी, मिट्टी की गुणवत्ता, फसलों की स्थिति और सिंचाई की आवश्यकताओं का विश्लेषण करके किसानों को बेहतर निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। इससे उत्पादन बढ़ने और संसाधनों का सही उपयोग करने में मदद मिलती है। परिवहन क्षेत्र में AI ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बना रहा है। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने तथा यातायात को सुचारू बनाने में सहायता करते हैं। भविष्य में स्वचालित वाहनों का विकास भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैंकिंग और वित्तीय

0: क्षेत्र में एआई ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने, ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने और लेन देन को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज कई बैंक एआई आधारित चैटबॉट्स का उपयोग कर रहे हैं जो ग्राहकों के प्रश्नों का त्वरित उत्तर देते हैं। इसके अतिरिक्त एआई पर्यावरण संरक्षण में भी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और पर्यावरण संसाधनों के संरक्षण में एआई वैज्ञानिकों की सहायता कर रहा है। प्रिय श्रोताओं, भारत भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार, शैक्षणिक संसाधन और निजी कंपनियां एआई के विकास और उपयोग को बढ़ावा दे रही है। देश में अनेक स्टार्टअप्स एआई आधारित समाधान विकसित कर रहे हैं जो समाज में विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि एआई के अनेक लाभ हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चिंता रोजगार को लेकर व्यक्त की जाती है। कई लोगों को आशंका है कि मशीनें उनके कार्यों का स्थान ले लेंगी। ये सच है कि कुछ कार्य स्वचालित हो सकते हैं, लेकिन साथ ही नई तकनीकों के कारण नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इसलिए समय की आवश्यकता है कि हम नई तकनीकों के अनुरूप अपने कौशल का विकास करें। दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती है गोपनीयता और डेटा सुरक्षा। एआई को कार्य करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये आवश्यक है कि लोगों की निजी जानकारी सुरक्षित रहे और उसका दुरुपयोग ना हो। इसके साथ साथ एआई के नैतिक उपयोग पर भी ध्यान देना आवश्यक है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि एआई के निर्णय निष्पक्ष हों और किसी प्रकार के भेदभाव को बढ़ावा न दें। तकनीकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि समाज में असमानता बढ़ाने के लिए। श्रोतागण, आज पूरी दुनिया जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात रिस्पॉन्सिबल एआई की बात कर रही है। इसका अर्थ है ऐसी एआई तकनीक का विकास और उपयोग जो सुरक्षित, पारदर्शी, नैतिक और समाज के लिए लाभकारी हो। भविष्य में एआई का प्रभाव और अधिक बढ़ने वाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तकनीक चिकित्सा, विज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। कई जटिल समस्याओं का समाधान एआई की सहायता से संभव हो सकेगा। लेकिन हम ये नहीं भूलना चाहिए, चाहे तकनीक कितनी भी उन्नति क्यों ना कर जाए, मानवीय संवेदनाएं, रचनात्मकता, नैतिकता और निर्णय क्षमता का कोई विकल्प नहीं हो सकता। AI एक शक्तिशाली साधन है, परंतु इसका सही उपयोग मानव बुद्धि और विवेक पर ही निर्भर करता है। विशेष रूप से युवाओं के लिए ये समय नई तकनीकों को समझने और उनसे जुड़ने का है। यदि हम AI का सही ज्ञान प्राप्त करें और उसका जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करें, तो हम अपने देश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि भविष्य की नई दिशा है। इसका उद्देश्य मनुष्य का स्थान लेना नहीं, बल्कि उसके कार्यों को अधिक प्रभावी और सरल बनाना है। यदि हम इसका उपयोग समझदारी और जिम्मेदारी के साथ करें, तो एआई मानवता के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: विज्ञान मंच में अभी आप सुन रहे थे वार्ता एआई की दुनिया। वार्ताकार थी अक्षदा मारतुरकर।
2: साथियों, जब भी बात संगीत की होती है, हमें बस अपने पसंद के गीत याद आने लगते हैं।
1: वाकई केरल, हमें ना बहुत से गीत इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमसे रिलेट करते हैं।
2: हाँ, बिल्कुल अपेक्षा। बिल्कुल सही बात है। कई बार हमारा जैसा मूड होता है, हमें वैसे ही गाने सुनने का मन करता है।
1: केरल, ये तुम्हारे साथ ही नहीं, हम सबके साथ होता है। और मूड के हिसाब से गाने सुनने का तो मजा ही अलग होता है।
2: बिल्कुल। और साथियों, आज तो सोमवार है, मतलब आज है बारी क्रम शामी गजल की। तो गजल प्रेमियों के लिए

0: दोस्तों, ये थी शामी गज़ल की पहली पेशकश। आवाज़ें थी आशा भोसले और गुलाम अली जी की, शायर थे नासिर काजमी।
1: और पसंद थी इन श्रोता साथियों की शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वाणी वर्मा की, दरचूरा से फिरंता साहू, दुलौरिन कामेश्वरी प्रीतम कुमार साहू की, महासमुंद से रोशनी छाया रूपसी साहू की, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू की, अमरपुर पेंड्रा से रेवा देवी, श्वेता सूरभि, अंजुलता दिशा और लबी श्रीवास्तव की। साथियों, गज़ल की अगर हम बात करें तो गज़ल अरबी भाषा से उत्पन्न एक बहुत ज़्यादा भावपूर्ण और संगीतमय काव्य विधा है।
0: ये एक निश्चित छंद, रदीफ और काफिया के नियमों में बंधी होती है और ये प्रेम और विरह से जुड़ी एक विधा है।
1: साथियों, अमीर खुसरो, मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब जैसे शायरों के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लोकप्रिय काव्य विधा बन गई है ये।
0: गजल के बारे में आगे भी जानकारी देंगे, उससे पहले सुनाते हैं ये प्यारी सी गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। बोल कुंवर महेंद्र सिंह बेदी के थे और संगीत घनश्याम वासवानी का था। और पसंद तीन श्रोता साथियों की,
1: अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, ज्योति रियांश ठाकुर, देतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, अरमरी खुर्द दुर्ग से जैनी वार्डे, नेहा वार्डे, त्विशा वार्डे, बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा दिनेश्वरी वर्मा, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम, मोहम्मद रजीद, बेमित्रा से भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार लकी सिन्हा।

0: साथियों गजल के क्रम से साथियों गजल में कम से कम पांच और अधिकतम कितने भी शेर हो सकते हैं, जिनमें शेर, मतला, रदीफ और काफिया होते हैं। गजल के हर दो पंक्ति को शेर कहा जाता है। पहली पंक्ति को मिसराए उला और दूसरी को मिसराए सानी कहते हैं।
1: गजल का पहला शेर जिसकी दोनों पंक्तियों में तुकबंदी होती है उसे मतला कहते हैं।
0: गजल का अंतिम शेर जिसमें शायर अपना उपनाम या तखल्लुस का इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं।
1: गजल में संगीतमयता लाने के लिए रदीफ, बार बार आने वाला समान शब्द, और काफिया, तुक मिलाने वाला शब्द का प्रयोग किया जाता है।
0: गजल की बारीकी और जानकारी आगे भी जारी रखेंगे। सुनते हैं ये अगली गजल।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फरीदा खानम को।
1: साथियों, गजल गायन और
0: पसंद तीन श्रोता साथियों की हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया रिंकू सन्नी कोमल यादव की, बेमेतरा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या और सुषमा सारथी की, बेमेतरा से नेत्राम साहू, मनीराम लक्ष्मी बिंदु डिंपल रामेश्वरी साहू की, शीतलानगर दुर्ग से शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर की।
1: साथियों, गजल गायन और मुशायरों में कविता के भावों को गहराई देने के लिए कई पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है।
0: और इसे ताल, सुर और संगत के आधार पर बजाया जाता है, जैसे तबला, ढोलक, हारमोनियम, सारंगी, सितार और वायलिन।
1: अरे वाह अपेक्षा, इतने सारे वाद्य यंत्र। गजल में तो बहुत सारे वाद्य यंत्र का उपयोग होता है।
0: वाकई,
1: और ये जानकारी बहुत पसंद आई अपेक्षा मुझे।
0: साथियों, इतनी सारी जानकारी सुनकर अब मुझे ना एक गजल सुनने की इच्छा हो गई है। तो साथियों, सुनाते हैं ये अगली गजल।

0: गुलाम अली की आवाज में ये थी हबीब जालिब की गजल।
1: और पसंद तीन श्रोता साथियों की गरियाबंद से गेंदलाल मिश्रा, चंद्रकांती, अर्चना, प्रतीक्षा, धनंजय मिश्रा की, कन्नेवाड़ा से देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मी देवी, गीतिका गुड़िया, पीएल निर्मलकर, श्रद्धा और लोचन विद्यार्थी की। साथियों वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले बता दे कल के कार्यक्रम।
0: कल की युवाणी सजेगी सवाल जवाब माटे के गीत।
1: इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त अपेक्षा शुक्ला,
0: कैरल पांडे को
1: इजाजत और स्वीकारे हमारा नमस्कार।

0: युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपरी केंद्र है। 6 बजने को है। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास जिम्मेदार

0: जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
4: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो।
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित,
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 13 जुलाई ले शुरू, 17 जुलाई तक चलैया सत्र में 5 बैठका होगी। प्रदेश में बिजली के भाव में करीबन 6% के बढ़ोतरी करेगी और गर्मी छुट्टी के बाद काली ले जम्मू सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुली। 27 जून तक मनाया जाही साला प्रवेश उत्सव। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 13 जुलाई ले शुरू होगी। विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ए बारे में अधिसूचना जारी कर दे है। 17 जुलाई तक चलैया इस सत्र में कुल 5 बैठका होगी। सत्र के दौरान वित्तीय कामकाज के संगे संग आने सरकारी काम पूरा करे जाही। भारत पश्चिम एशिया में चलत संघर्ष ल खत्म करे बर अमेरिका और ईरान के बीच हो

0: समझौता के स्वागत करे हे। इस संघर्ष ले विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट खड़े हो गए रहिस। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता ले क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग राष्ट्र निर्माण में बड़का योगदान दे है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पाछू एक दशक में सरकार आम लोगन मन के जिंदगी सुधारे बर बढ़िया बुनियादी ढांचा, कम खर्चा में स्वास्थ्य सेवा, बने ढंग ले पढ़ाई लिखाई, साफ सफाई वाले शहर के संगे संग सार्वजनिक सेवा मन ऊपर ध्यान दे हवय। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग घरेलू उपभोक्ता के बिजली दर में 30 पैसा प्रति यूनिट ले 50 पैसा प्रति यूनिट के बढ़ोतरी करे है। ऐसने बिजली दर में 6.23% के बढ़ोतरी करे गए है। उन्हें घरेलू गैर घरेलू उपभोक्ता के बिजली दर में 20 पैसा ले 40 पैसा प्रति यूनिट के बढ़ोतरी करे गए है। कृषि पंप मन में बिजली के भाव में प्रति यूनिट 40 पैसा के बढ़ोतरी करे गए है। उन्हें गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शन ल ऊर्जा प्रभार में दे जाए छूट ल 30% ले बढ़ा के 40% कर दे गए है। बिजली के बढ़े दर अवैया 1 जुलाई ले प्रभावी होगी। गर्मी के छुट्टी के बाद काली ले प्रदेश के जम्मो सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद खुल जही। इस दौरान हुआ कार्यक्रम में शाला प्रवेश उत्सव पर स्कूल प्रबंधन पूरा तैयारी कर ले है। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल अवैया नवा लड़का मल्ला तिलक लगा के स्वागत करे जाही और संगे संग छात्र मल्ला पुस्तक ड्रेस और साइकिल दे जाही। इसी बीच स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के स्कूल मन में नवा शिक्षा सत्र ले राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्य गीत के संगे संग आने आने गतिविधि ल जरूरी रूप ले कराए जाए के निर्देश जारी करे है। मुख्यमंत्री प्रदेश के जम्मो जनप्रतिनिधि मन ल चिट्ठी लिख के 16 ले 27 जून तक होइया शाला प्रवेश उत्सव में अपन भागीदारी दे के आह्वान करे है। मुख्यमंत्री कहिन है कि शिक्षा कोनो भी समाज और राष्ट्र के विकास के आधार हरे। उमन मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष, महापौर के संगे संग नगरी निकाय मन के जनप्रतिनिधि मन ले विनती करें कि अपन क्षेत्र के स्कूल में जाके ये अभियान में सहभागी बने। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के गर्मी के छुट्टी खत्म होने के बाद आज ले खंडपीठ और एकलपीठ मन में सुनवाई एक घाव फिर शुरू हो गए। आज ले वकील मन अदालत कक्ष में आके अपन पक्ष राखिन। जानबा के मुताबिक हाईकोर्ट में गर्मी छुट्टी 18 मई ले शुरू हो रही। ये दौरान सिर्फ जरूरी मामला मन के सुनवाई पर हरेक हफ्ता विशेष अवकाशकालीन पीठ बनाई गई रही। अवैया मानसून ल देखत आज ले छत्तीसगढ़ के जम्मू टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य मन ल पर्यटक मन भर बंद कर दे गए है। ये जम्मू संरक्षित वन क्षेत्र अब 1 अक्टूबर तक बंद रही। वन विभाग के मुताबिक पर्यटक मन भर अब जंगल के दरवाजा 2 अक्टूबर ले खोले जाही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला पर दोबारा होवत परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दे है। एला NTA के वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN ले डाउनलोड करे जा सकते। परीक्षा 21 जून के मझनिया 2 बजे ले शुरू होगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार खोती। पशुपालन ल बढ़ावा देबर राज्य सरकार बस्तर के हर परिवार ल दुदुठिन गाय या भैंस दीही। ए घोषणा काली रायपुर में हुए एक ठिन पुस्तक के विमोचन समारोह के मौका में मुख्यमंत्री कहिन। उमन कहिन कि नक्सलवाद के सेती बस्तर के लोगन मन विकास ले दुरिया रहीस। एखरे सेती अब तेजी ले विकास कम करे जाही। एखर बर रोड मैप तैयार कर ले गए है। मुख्यमंत्री बताइन कि गांव गांव में राशन दुकान खोले जाते और सुरक्षा शिविर मन सेवा डेरा के रूप में विकसित करे जाते। कार्यक्रम के ए मौका में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घलो शामिल होइन। दुर्ग जिला के पुलिस लाइन सभागार में हो एक ठिन कार्यक्रम में आज राष्ट्रपति कोती ले शौर्य चक्र ले सम्मानित निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख के नागरिक अभिनंदन करेगी। ये मौका में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल कहिन कि ये दोनों अधिकारी मन कठिन स्थिति में साहस धैर्य के परिचय देके छत्तीसगढ़ पुलिस के गौरव बढ़ा है। उमन बताइन

सौर्य चक्र शांतिकाल में दे जाए देश के तीसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान रहे। ए बेरा कांकेर जिला के पखांजूर थाना प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण केवट 40 ठिन सफल नक्सल मुठभेड़ मन में शामिल रहीन। तो उहे भानु प्रतापपुर थाना प्रभारी निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख 25 ठिन नक्सल विरोधी अभियान में अपन भूमिका निभाइन। आयुष मंत्रालय आज नई दिल्ली में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के होवैया कार्यक्रम पर औपचारिक कार्यक्रम मन के शुभारंभ करीन। आयुष मंत्री प्रताप राव यादव नई दिल्ली में संवाददाता मल्ला बताइन कि प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कोलकाता के रेड रोड में करे जाही। उमन बताइन कि मौका में 45 मिनट के योग प्रोटोकॉल रखे जाही। इसो के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। केंद्र के मोदी सरकार के 12 बच्चर पूरा होए के मौका में गौरेला पिंडरा मरवाही जिला के भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा डहार ले पिंडरा नगर के मुक्तिधाम परिसर में स्वच्छता अभियान चलाएगी। उन्हें शक्ति जिला पंचायत कार्यालय में घलो मोदी सरकार के 12 साल पूरा होए ऊपर प्रदर्शनी रखे गए है। रायपुर में होए 36वां राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मन बढ़िया प्रदर्शन करीन। नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में होए 3 दिन के प्रतियोगिता के आखिरी दिन काली छत्तीसगढ़ एक स्वर्ण 2 रजत और 1 ठिन कांस्य पदक के संग 4 ठिन पदक जीतीन। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ कुल 3 स्वर्ण 2 रजत और 4 ठिन कांस्य पदक मिलीस। पूरा प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश पहली जगह बनाईस तो उन्हें दूसर स्थान में केरल और ओडिशा तीसर स्थान मिलीस। प्रतियोगिता में देश के 24 राज्य ले करीबन 800 खिलाड़ी मन भाग लीन। अब पेशे मौसम के हाल। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून के पहुंचे में थोड़ी समय लग सकते। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी है बताइन कि बिहार ले लेके दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक ठिन द्रोणिका बने हैं। एकर प्रभाव ले कोनो कोनो जगह में गरज चमक के संग वर्षा हो सकती है। अब थोरकुन समाचार सार में। दुर्ग जिला के अग्रसेन चौक और ओखर तीर तखार के रद्दा में अवैध रूप ले चलाए जात ठेला खोमचा वाले मल्ल प्रशासन डहार ले हटाए के कार्रवाई करेगी। कबीरधाम जिला के दसरंगपुर पिपरिया थाना और साइबर सेल के संयुक्त टीम है बिजली वाले जिनिस के गबन और चोरी के आरोप में 5 जिन आरोपी मल्ल गिरफ्तार करे है। और कोंडागांव जिला में पटवारी भर्ती में चयन कराए के झांसा देवैया एक जिन मनखे ले करीबन 6.5 लाख रुपया के ठगी करे के मामला आगू आए है। ये मामला में पुलिस एक जिन युवक ल गिरफ्तार करे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 13 जुलाई ले शुरू 17 जुलाई तक चलैया सत्र में हो ही 5 बैठका। प्रदेश में बिजली के भाव में करीबन 6% के बढ़ोतरी करेगी और गर्मी छुट्टी के बाद काली ले जम्मो सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल ही 27 जून तक मनाया जाही साला प्रवेश उत्सव। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 होने को हैं। संस्कृत समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: स्थापिता भविष्यति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्त भण्डारः वर्तते, अथ च अलनीनो कारणेन अपि खाद्यान्नस्य नैयून्यं न भविष्यति। उत्तरप्रदेशस्य जेवरक्षेत्रे नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं वाणिज्यिकरूपेण आरब्धम्। अद्यारभ्य तत्र विमानानां सञ्चालनम् अभवत्। अपि च फीफा विश्वचषक स्पर्धायां स्वीडनदेशः अद्य मेक्सिको देशस्य मोंटेरे क्रीडाङ्गणे ट्यूनेशिया देशं 5-1 अंकान्तरालेन पराजयत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्रत्येन प्रधानमन्त्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। उपवेशनस्य अनन्तरं संयुक्तवार्ताहर सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया सम्बन्धान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तौ। श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयोः रक्षासहयोगं परस्पर विश्वासस्य प्रमाणं वर्तते। देशद्वयेन रक्षाक्षेत्रे सहयोगं समेधितुम् अपि सहमतिपत्रं हस्ताक्षरितम्।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एआई इत्यस्य भविष्यं न केवलं नवोन्मेषे अपितु मानव गरिमा विश्वासाधारितम् अपि भवेत्। श्रीमोदी अवोचत् यत् प्रौद्योगिकी क्षेत्रे विहित सन्धिः अपि देशद्वयोः मिथः सहयोगं दृढयिष्यति।
1: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: अत्रावसरे स्लोवाकिया देशस्य प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भारतस्य समेधमानार्थव्यवस्थां प्रौद्योगिकी विकासं च प्रतिपादितवान्। तेन संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदि भारतस्य स्थायि प्रतिनिधित्वम् अपि समर्थितम्। अवधेयं यत् गतशताब्दस्य 93वें तमाब्दे स्लोवाकिया देशस्य स्वतन्त्रतायाः अनन्तरं कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा स्लोवाकिया यात्रा वर्तते। भारतेन पश्चिम एशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः सन्धेः स्वागतं कृतम्। एतेन संघर्षेण विश्वे गंभीरः आर्थिक संकटः जातः, अनेकेषु देशेषु प्राणहानिः च अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक माध्यमेषु एकस्मिन् संदेशे उक्तवान् यत् भारतस्य आशा अस्ति यत् सन्धेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः, स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति। अनया व्यापारस्य स्वतंत्रता सुनिश्चिता भविष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्त भण्डारः वर्तते, अथ च अलनीनो इति उष्णतापस्य दुष्प्रभावेण अपि खाद्यान्नस्य नैयून्यं न भविष्यति। अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्याम् आयोजिते माइंड माइन इति सम्मेलने वित्तमंत्री अवोचत् यत् खरीफ इति ग्रीष्मर्तौ धान्येभ्यः पर्याप्त मात्रायां उर्वरकोपलब्धता वर्तते। तयोक्तं यत् ऐषमः प्राविट् नैयून्यं स्यादिति सम्भाव्यते, तथापि अस्माकं पार्श्वे पर्याप्त भण्डारः विद्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आयुष मन्त्रालयेन अद्य नवदिल्ल्यां 12 अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आप

0: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे अमृता नंदी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुद्धू।
7: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
7: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने

0: अक्लमंदी की बात किए रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी, 1 जुलाई से प्रभावी होंगी बढ़ी हुई दरें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से होगा शुरू। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे शाला प्रवेश उत्सव। और मानसून के मद्देनजर आज से लेकर 1 अक्टूबर तक के लिए छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद किए गए। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दर में 30 पैसे प्रति यूनिट से 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। इस तरह से आयोग ने बिजली दरों में 6.23% की औसत वृद्धि की है। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। कृषि पंपों के लिए विद्युत की दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। वहीं गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही छूट को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। बिजली की बढ़ी हुई दरें प्रदेश में 1 जुलाई से प्रभावशील होंगी। महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित उद्योगों, बस्तर और सरगुजा सहित राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर के अलावा पोहा और मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 10% की छूट को जारी रखा गया है। देरी से किए जाने वाले भुगतान पर लिए जाने वाले अधिभार को अब प्रति माह के बजाय प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाएगा। वहीं अग्रिम भुगतान किए जाने पर दी जाने वाली 0.25% की छूट को घटाकर 0.75% कर दिया गया है। भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहर तथा सार्वजनिक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।

0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 17 जुलाई तक चलने वाले इस 5 दिवसीय सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। इस दौरान आयोजित किए जाने वाले शाला प्रवेश उत्सव के लिए स्कूल प्रबंधन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 16 से 27 जून तक आयोजित होने वाले शाला प्रवेश उत्सव में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने नए शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें पूरी लगन और उत्साह के साथ पढ़ाई करने का संदेश दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकल पीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। आज से अधिवक्ताओं ने अदालत कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। हालांकि पहले की तरह कई मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नक्सलवाद की समाप्ति के बाद बस्तर क्षेत्र में राज्य सरकार कृषि के साथ पशुपालन को बढ़ावा देगी। कल रायपुर में आयोजित एक पुस्तक के विमोचन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि बस्तर के हर जनजाति परिवार को 2-2 गाय या भैंस दी जाएंगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से दिया, अब बोली का जवाब बोली से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार समर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नक्सलियों ने अपने जिन कैडर की नसबंदी कर दी थी उनकी नसबंदी खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन मामलों में यह संभव नहीं हो पाएगा ऐसे दंपत्ति को टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर, छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष शशांक शर्मा, पुस्तक तेरा राज नहीं आएगा रे के लेखक राजीव रंजन प्रसाद और रचना नायडू ने भी संबोधित किया। मॉनसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये सभी संरक्षित वन क्षेत्र अब 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। जिन संरक्षित वन क्षेत्रों में पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा उनमें अचानकमार, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, बारनवापारा अभयारण्य और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। वन विभाग के अनुसार 2 अक्टूबर से इन सभी संरक्षित वन क्षेत्रों में जंगल सफारी और अन्य पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू की जाएंगी। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 14वें चरण की शुरुआत आज से हो गई है। इस बार बस्तर संभाग के 7 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव के साथ ही गरियाबंद, कबीरधाम और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले के संवेदनशील गांवों में भी यह अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत राज्य के 36 विकास खंडों के 697 उप स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत आने वाले 2476 गांवों में सर्वेक्षण किया जाएगा। इस अभियान के तहत लगभग 16,20,000 लोगों की मलेरिया जांच का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष, महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में हुई इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम दिन कल छत्तीसगढ़ ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 4 पदक जीते। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। ओवरऑल खिताब मध्य प्रदेश ने 257 अंकों के साथ जीता, जबकि केरल दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से लगभग 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में मॉनसून के पहुंचने में कुछ और समय लग सकता है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत की।
1: आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात, तेज हवा,

0: और एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ एवं उत्तर छत्तीसगढ़ होने की संभावना है। अधिकतम तापमान आगामी 3 दिन तक लगभग 1 से लेके 2 डिग्री का वृद्धि होने की संभावना है। मॉनसून का प्रो आगामी 4 से लेके 5 दिन का अंदर छत्तीसगढ़ में एंट्री होने की संभावना है।
1: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। दुर्ग जिले के पुलिस लाइन सभागार में आयोजित एक समारोह में आज राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख का नागरिक अभिनंदन किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में इस शैक्षणिक सत्र के लिए सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दुर्ग जिले के अग्रसेन चौक और उसके आसपास की सड़क में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे ठेले खोमचों को प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई। कबीरधाम जिले की दशरंगपुर पिपरिया थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने विद्युत सामग्री के गबन और चोरी के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में लगभग 29 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति बरामद की गई है। और कोंडागांव जिले में पटवारी भर्ती में चयन कराने का झांसा देकर एक युवक से करीब 6.5 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी, 1 जुलाई से प्रभावी होंगी बढ़ी हुई दरें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से होगा शुरू। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे शाला प्रवेश उत्सव। और मानसून के मद्देनजर आज से लेकर 1 अक्टूबर तक के लिए छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: बंधु, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
5: पर कार जीत जाते तो
6: पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
7: कूल रहो।
8: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, 7 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। पहले आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज़ों में मेहरबान इस फिल्म का गीत। दिलीप सेन समीर सेन का संगीत है, बोल समीर के।

कार्यक्रम का अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं, समीर के बोल आदेश श्रीवास्तव का संगीत और फिल्म का नाम है बागवान।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये था फिल्म बागवान का गीत। और चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में राजेश मलिक का लिखा गीत। संगीत हिमेश रेशमिया का है और फिल्म का नाम है कहीं प्यार ना हो जाए।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम निधि।
1: राम राम लालजी भाई। संगी संग चौपाल सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला। हमर दोनों के
0: राम राम, राम। निधि देख भाई, कोनो भी कारज के हम शुरुआत होते न तो ओकर बर का जरूरी होते ला बता।
1: देख कारज के शुरुआत से कर डरे संगवारी मन घलो जान थे कि हम पहली योजना बनाथन ओकर तैयारी करथन तभी तो हमर कार्य सफल हुई।
0: बिल्कुल भाई, जैसे कि हम खेती किसानी के बूता करन है ना, कि सबले पहली जब खेती किसानी के हम शुरुआत करथन तब मेड़ पार ल बनाई, खेत के साफ सफाई काटा खुटी बिनाई है ना, इमें का है कि सबो प्रकार के व्यवस्था करत करत बात आ जाते उन्नत बीज चुनाव के, तो ओला करथन भाई।
1: हाँ, अब ये उन्नत बीज चुनाव जब हम करते हैं तो ये चाहतन कि बढ़िया ले बढ़िया हम बीज ला लानन, और बीज काबर हम उन्नत बीज लेवत हैं जेकर ले फसल के उपज बढ़े
0: बढ़े हैं
1: और किसान संगवारी मन ला फायदा मिले
0: फायदा मिले। और ये का है कि जब भी बीज के चुनाव हम करते हैं है ना, तो हमला प्रमुख रूप से का बात के ध्यान रखना चाहिए एकरो को जानना जरूरी है ना?
1: बिल्कुल।
0: पहली तो अपन खेत के हिसाब ले बीज चुनाव करन का है, हमन यदि खेत के जो माटी है ना, जैसे पथरीला भूमि है या टिकरा भूया है जिमे कम दिन में पकने वाला धान जैसे कि दंतेश्वरी है, सहभोगी है, पूर्णिमा धान है, ये मन बढ़िया रहते। और एकर बार कोई हम माई धान लगावा थन तो वो फिर नुकसानदायक होते हैं।
1: बिल्कुल सही गोट करत हस भैया। और यहू है जानकार मन बताते हैं कि सबो भूया था एक असन नहीं हुए कोनो ऊपर है तो कोनो नीचे है, कोनो गहरा है कहूँ कहूँ मेर कछार भूया होते। जी हाँ, पानी हाँ ज्यादा ठहरते एकर बार ज्यादा दिन माँ पकैया और सुगंधित धान बने माने गए है। एमा आते महामाया, बम्बलेश्वरी, दुबराज, MTU 1010, 1001 के चुनाव बहुत अच्छा माने गए है।
0: अब देख ऐसे तो हमर खरीफ में प्रमुख रूप से हम धान की खेती करते हैं। फिर कतको संगी मन है मोटा अनाज ले बारे में सोचते हैं, जैसे कोदो है, कुटकी है, रागी है। अब ये भी लगाए बर जब हम पसंद करते हैं, काबर के आज देखे जाते कि हमर स्वास्थ्य बर और पर्यावरण बर दोनों बर जो है ये मोटा अनाज बहुत जरूरी है। और जब एक बीज के गोट करन ना तो कोदो बर हमन ला इंदिरा कोदो एक आओ छत्तीसगढ़ी को दो ऐसे हम मिलते हैं।
1: अब इसने ना देख लालजी भाई, रागी भर इंदिरा रागी जोन एक है और छत्तीसगढ़ रागी दो, ये बीज मन ला सुखा के हमन अच्छा से उपयोग कर सकथन। ये हमर भुइया पर घलो बने होते और यह माने जाते कि कमती भुइया मा कमती रगमा मा घलो ये मोटा अनाज है बढ़िया उपज देते।
0: कहे का मतलब ऐसे है कि हम कम पानी में घलो एकर खेती कर
1: बिल्कुल कर सकते
0: है ना भाई। अब कतकोन संगवारी मन का करते कि प्रमाणित जो शोध करे हुए बीज है एला अपन बिसाते जेमा हमन देखथन कि कतकोन संगी मन दुकान ले कतकोन प्रकार के बीज रहते तेला ले आते। ऐसन बेरा मा हमला हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो कृषि केंद्र है या जो सहकारी समिति है या कोनो जानकार है ओकर ले सलाह लेकर के बीज लाना चाहिए, ताकि हम जो बीज लात हन वो पर्याप्त जगह। और दूसर चीज ये है कि बीज ला डरेन कतको संगी मन है एके पीक हो है ऐसे कही के घर एक बीज बोरते है ना, तो ओकर बर का है कि बीजो उपचार करे और बीजो उपचार करे के संगे संग समय रहते कुछ बीजा ला निकाल के जगा के देख लें ताकि अंकुरन सही आते कि नहीं आते। और एकर ले का है निधि कि रोग राई के जो समस्या है वो कम होते
1: बिल्कुल सही गुड बात कर रहे भाई। अब इसने संगवारी हो खरीफ में प्रमुख रूप ले धान फसल जिन बने खाद उर्वरक है ना हमन डालन और बहुत ही जरूरी हुए तब हमन उर्वरक के उपयोग ला करन, बहुत ही हो सके तो हमन मतलब जैविक खाद के उपयोग करना चाहिए। काबर की जानकार मन की यहू कहना है कि हमर भुइया जोन है तेन हा मनमाना जिन रासायनिक उर्वरक खाद ले का होते खराब हो जा पथरा जाते और उकर उर्वरक शक्ति है कम हो जाते, तो संतुलित मात्रा में मा, सही बेरा में एकर उपयोग हमार फसल पैदावार बर बने होते हाँ। और हमार यहाँ जो खेती किसानी जो है तीन तो भाई जिंदगी के आधार आए।
0: बिल्कुल,
1: जैसे खरीफ के मौसम शुरू होते तो संगवारी मन अपन धान के बोनी और रोपा बर लग जाते और ये बेरा खेत ला बढ़िया बनाए बर ओकर धान के फसल बर बीज खाद उर्वरक

बहुत अच्छा काम देते। तो ऐसा नहीं कि जतका हम मेहनत करथन है ना, और कहूँ हम ओला बने ढंग ले करबो तो हमार जो मेहनत है तेनो सफल हुई और हमार खेती किसानी के काम बूता अच्छा रही। और ऐसा नहीं लाल जी भाई, गोट बात तो हमन मन के सिरावे नहीं, फिर संगवारी मन संग सुन लेथन ये संदेश।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मो प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सब लग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: निधि, अभी हमन गोठियात रहे हैं कि रासायनिक खाद के बारे में। अभी रासायनिक खाद के जो उपयोग है, एकर ले हमर जो भूमि है ये पथराज जात है, कड़ा हो जात है। एकर बर आजकल हमन देखथन कि जो मनमाने ढंग ले रासायनिक उर्वरक के जो प्रयोग है, ये हमर माटी ला प्रदूषित करत जात है और ओकर उर्वरा शक्ति ला कमजोर करते छे। और इकरे जानकारी खातिर एला बचाए बर 1 जून ले लेकर के 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाए जाते हैं, जेमे माटी के जोन परीक्षण है और प्राकृतिक खेती हम कैसे कर सकथन और हमर माटी ले मजबूत बना सकथन, एक ओती जोर दे जाते हैं।
4: और खेत बचाओ अभियान, हाँ, ये विषय के जानकारी देवर हमर संग मा डॉक्टर मनोज कुमार साहू, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रायपुर हा जुड़े हैं। तो सुनथन आप मन का कहत हो
5: किसान भाइयों, अभी जून के महीने मतलब 1 जून से 30 जून तक खेती बचाओ अभियान केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पूरे इंडिया में ये अभियान चल रहा है। इसके तहत भी किसान भाइयों को अपने खेतों को खराब होने से कैसे बचाएं, इसके संबंध में जो है आपको जानकारी दी जा रही है। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि हम लगातार रासायनिक खाद, हाइब्रिड धान, ये सारे उपयोग करके जो है हमारा खेत जो है ना धीरे धीरे जो है जा रहा है, पॉल्यूटेड होते जा रहा है। इसलिए हमारे खेत को जो है धरती माता को इस विषैलापन से बचाना है कि आज हम देख रहे हैं लगातार जो है यूरिया, लगातार डीएपी खाद उपयोग करने से खेत जो है धीरे धीरे बंजर होते जा रहा है, जमीन सख्त जा रहा है। क्या होता है किसान भाइयों की हम लगातार जो है जैसे 50 किलो हम यूरिया डाल रहे हैं तो उसमें मात्र 23 किलो जो है यूरिया पौधा लेता है, बाकी सब जो है ईंट पत्थर कंकड़ वो रहता है, वो जमीन के अंदर जाके जमीन को सख्त बना रहा है। हमारे जमीन कड़ा हो जा रहा है, जुताई हो नहीं पा रहा है, पौधों का विकास रुक जा रहा है। इसलिए हमको इस चीज को अपने खेती को बचाने के लिए, अच्छा उपजाऊ करने के लिए हमको कुछ सिद्धांत है उसको अपनाना है। पहला सिद्धांत है हमको ग्रीष्मकालीन जुताई। किसान भाइयों, यदि हम खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई करेंगे, अकरस जुताई करेंगे तो खेत भुरभुरी होगी, पानी सोखने की क्षमता बढ़ेगी और कीड़े मकोड़े के अंडे के सब मर जाएंगे और हमारा फसल अच्छा होगा, एक पहला है। दूसरा है कि हमको जो है सीधा जैविक खेती, यानी कि जैविक खेती में जाना है। इसके लिए आपको चाहे गोबर खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे पत्ती खाद हो, ये कम से कम एक खेत में 3 साल में कम से कम एक बार जरूर डालें। इससे क्या होगा, खेत का जो कार्बन की मात्रा बढ़ेगा और जिन किसान भाइयों का जो खेत का कार्बन की मात्रा 1 से कम है तो उसमें जीवांश की मात्रा कम है, पैदावार कम आता है। इसलिए हमको कम से कम हमारा कार्बन, हमारा जीवांश मात्रा है जमीन के वो कम से कम 1 होना चाहिए। इसलिए आपको चाहे आजकल पूर्वजों लोग जो है घरुआ खाद उपयोग करते थे, पत्तियों पर डालते थे, ये सब उपयोग करना है। दूसरा है हरी खाद। आजकल ढेंचा, सनई, लोबिया, मूंग, ये हरी खाद जो है जिन किसान भाइयों के पास पानी का साधन है वो लोग जो है इसको रोपा लगाने के 3 दिन पहले बुआई कर देते हैं और जब रोपा लगाना रहता है उस समय उसमें खेत में मिला देते हैं तो उससे भी अपना खेत का जो कार्बन की मात्रा है, खाद की मात्रा है वो बढ़ते जाएगा। एक तीसरा ऑप्शन है आजकल नील हरित काई का आ गया है, ये सभी कृषि विभाग को टारगेट मिला है। हर किसान के घर पे जो है वो टाका बनना है, छोटा सा जो है आइट है जिंदगी बना सकते हैं। इसके लिए जो है आप 10 फीट 10 बाई 5 बाई 3 फीट 2 फीट का जो है गड्ढा बनाए, वहां झिल्ली का मल्चिंग करें और उसमें मिट्टी डालें और 2 किलो सुपर फास्फेट और 2 किलो चूना, ऐसा करके जो है आप और 500 ग्राम जो है नील हरित काई को डाल के अक्सर मिला दें और 15 से 20 दिन तक छोड़ दें। तो ऐसा करने से धीरे धीरे जो है नील हरित काई बनता है और उस काई को फिर जब 18 दिन

नमक बनने के बाद निकाल के सुखा दें छाया में, और उसको प्रति एकड़ जो है 5 से 10 किलो जो है आप उसको डालेंगे, तो आपका खेत में कंसा अवस्था में पूरा वायुमंडल से लगभग 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन आपके पौधों को देगा। ये एक तरीका है जैविक खेती में। तीसरा है आपका जो है जो जितने भी कल्चर हैं, जैसे PHG कल्चर है, गेस्टेबेटर कल्चर है, ये सारी कल्चर भी आपका बहुत ही लाभदायक है खेतों के लिए, क्योंकि हमारे जमीन के जो हम खाद डालते हैं रासायनिक खाद, तो कुछ मात्रा वहाँ पर रहता है, तो उन खादों को ये जो बैक्टीरिया जीवाणु है वो पौधों को खाने खिलाने के रूप में

0: मिले, क्योंकि हमारे जमीन पे जो हम खाद डालते हैं रासायनिक खाद, तो कुछ मात्रा वहाँ पड़ा रहता है, तो उन खादों को ये जो बैक्टीरिया जीवाणु है वो पौधों को खाने खिलाने के रूप में जो है चेंज करके दिलाते हैं। ये कल्चर का भी उपयोग करना चाहिए। इस तरह से आपको जो है जो जैविक खेती है या प्राकृतिक खेती है इस पे आना है, तभी हमारा मिट्टी जो है स्वस्थ होगा।
1: निधि, जैसे अभी सुग्घर अकल ने हम खेत बचाओ अभियान के बारे में सुनत रहे, ऐसने खेत ल बचावत तो खेती किसानी के बूता करत अगोरत हमर जो किसान संगी है एमन आजकल आकाश को तिल देखत रहते, और जैसे बादर उमड़ घुमड़ के आते और थोड़ी बूंदा बांदी आते तो मन हर्षित हो जाते कि अब हमर खेती किसानी के दिन बादर आगे कहके, तो ऐसने बादर ले जुड़े और खेती किसानी ले जुड़े सुनथन गीत जेला स्वर देहे ध्रुवा राम मरकाम और दुखिया बाई हर।

0: धुरुआ राम मरकाम और दुखिया बाई के स्वर में अभी सुनत रहें, बहुत सुघर अकल गीत।
1: लालजी भाई देख, खेती किसानी के गोट बात ले तो हमन करें कि उन्नत बीज ले हमारे खेती मा जोन फसल हमन लेथन तो वो हर लाभ के रही थे। और एक संग संग भाई किसान संगवारी मन तो भाई खेती किसानी करबे करते संग मा और दिगर काम घलो करते। कतको संगवारी मन हा पशुपालन करते, तो कतको संगवारी मन हा और दिगर फसल जैसे उद्यानिकी के फसल लगते, तो कोनो कोनो संगवारी मन मछली पालन घलो करते।
0: अब यहू है एक ठन का है आमदनी बढ़ाए के एक अच्छा साधन है। अब एला हमन ला कई ठन प्रकार के जो सुरता है ओला देवावत और एला कई प्रकार के ध्यान रखन, जैसे हम धान के फसल ले हन तो ओमे जोन गोट करत रहन वैसने यहू में जैसे तालाब के चुनाव करना,
1: माने यहू में हमन मतलब योजना तैयारी करके रखना है,
0: बिल्कुल,
1: है ना। मतलब कोनो भी कार्य करत
0: हन,
1: अब मछली पालन करत हन तो वहू में हमन मतलब तैयारी करे के जरूरत पड़ते, यही कहना चाहत हस संगवारी मन ले। तो का तैयारी लगते एकर बर?
0: बिल्कुल निधि, ऐसे है देख, सबले पहली तो बढ़िया सन तालाब के चुनाव कर।
1: हाँ, तालाब ऐसा के दे, जैसे मछली पाले के कोनो जगह है तो वहाँ बने पानी के सुविधा हवे के नहीं, सुखाए झन रहे, तेकर ध्यान ल राखन, है ना।
0: और दूसर बात ये है कि पानी जो उपयोग में लात हन ओकर जांच कराना जरूरी है,
1: एकर पाए के जांच करवाना जरूरी है संगवारी हो के तालाब के जन पानी है जिन तरिया के पानी है तेन साफ हवे के नहीं, एकरो हमला ध्यान रखना है। कोनो कोनो पानी अम्बली नहीं होना चाहिए, है ना। का होते अम्बली पानी में मछली के बढ़वार हा बने नहीं हुए और कतको ठन रोग रही लगे के खतरा बने रही थी,
0: मतलब नुकसान ज्यादा
1: ज्यादा हो जाते
0: है ना। इसने जैसे मछली के बीजा है तो बने बीज लेबो तब जाके फसल बने हुई है ना भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा नहीं लाल जी भाई, मछली के बीजा बने हुए उकर खान पान दाना बने हुए हम बीमारी ले बचाव के घलो गोट करन, फिर एकर संग संग नवा तकनीक आए ले हमर कतको काम सरलग घलो हो गए हैं। अब देख ऐसा है, हमन मन तो गोट बात करत रही वो, फिर सब बोला तो हमन जानकारी हमन नहीं बोल सकन। नहीं, कबर के संगवारी मन तो हमार जानबे करत है, कबर की वहू मन हा मछली पालन करके अपन आय ला बढ़ावत है। फिर ज्यादा जानकारी आज हम सुनबो हमर क्रम आज की सलाह मा, जेकर विषय घलो हमर यही गोड़ बात ले जुड़े हवे, मछली पालन एवं प्रबंधन। विस्तार ले बतावत हैं डॉक्टर प्रेम कुमार प्रधान, वैज्ञानिक केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई ले। क्रम है क्रम आज की सलाह।
0: किसान संगवारी हो, यदि कहूँ हमन मछली पालन करना चाहत हन और ये मछली पालन खातिर कनो विशेषज्ञ के हमला सलाह मिले तो फिर ये सोने में सुहागा होते। इसने आज मछली पालन के संबंध में जानकारी दे खातिर हमर बीच विशेषज्ञ है डॉक्टर प्रेम कुमार प्रधान, वैज्ञानिक केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई ले। डॉक्टर साहब के हमर कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम।
2: राम राम किसान साथियों।
0: डॉक्टर साहब, सबले पहले ये बताते हो कि ये मछली पालन खातिर हमर जो प्रारंभिक तैयारी है वो कैसे होना चाहिए?
2: किसान भाइयों, मछली पालन के लिए सबसे प्रमुख है कि आप तालाब की तैयारी बड़ी अच्छी ढंग से करें, क्योंकि तालाब जो है मछलियों के लिए परिवेश है। अगर आप अच्छा परिवेश देंगे तो मछली का जो पालन है वो बहुत ही सहज और बहुत सुखद होगा। और इस तालाब प्रबंधन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप तालाब में जो पानी डाल रहे हैं उस पानी की गहराई कितनी होनी चाहिए। तो मूल रूप से पानी का गहराई जो है कतला रोहू मृगाल के पालन के लिए 2 से 3 मीटर तक की होनी चाहिए।
0: और डॉक्टर साहब, जिसे हमारे कोनो किसान संगी में नवा है मछली पालन करना चाहते तो तालाब निर्माण कतेक क्षेत्रफल में करना चाहिए और कतेक गहराई होकर होना चाहिए ला बताते हो?
2: क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा।

0: तो तालाब क्षेत्र जनरली हम लोग 2 से 3 एकड़ या अगर हेक्टेयर में बोले तो 1 हेक्टेयर का तालाब जो है सो बहुत ही अच्छा होता है उसको मेंटेन करने के लिए। उसमें मछली पालन जो है बहुत सहज होता है और मछली का विकास भी बड़े तालाबों में बहुत अधिक देखा गया है। इसलिए जितना बड़ा तालाब होगा उतना आपको ज़्यादा लाभ होगा। और दूसरी बात, जो तालाब में जो पानी का जो गहराई है ये एक बहुत ही मुख्य बातें हैं मछली के उत्पादन के लिए। 2 से 3 मीटर या आप बोलें फीट में बोलेंगे तो 6 से 6 फीट के आसपास होना चाहिए।
1: ये तो बहुत सुघर जानकारी देव डॉक्टर साहब। जैसे अपन मछली बीज डालना है तो कब डालना चाहिए और कतेक मात्रा में डालना चाहिए ला बताते हो?
0: ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी है। कभी कभी किसान भाई बहुत ज़्यादा डाल देते हैं मछली और कभी अगर कम डाल देते हैं। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो मछली के मरने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मछली का विकास भी नहीं होगा। अगर आपने कम डाल दिया तो क्या होगा, आपको लास्ट में जो उत्पादन है वो बहुत ही कम होगा। इसलिए एक अनुकूल मात्रा में मछली का जो पालन और मछली की संख्या जो होनी चाहिए प्रति हेक्टेयर की दर से 10,000 से 12,000 के मछली के बच्चे को आप उसमें डालिए। मछली का बच्चे का साइज क्या होना चाहिए? अगर मछली के बच्चे का साइज बहुत छोटा है तो आप 20,000 भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर मछली के साइज उंगलिकाओं के साइज के बराबर है तो आप 10 से 12,000 प्रति हेक्टेयर की दर से कतला रोहू मृगाल का स्टॉकिंग कर सकते हैं जो कि बहुत ही लाभदायक होगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसे अपन मछली पालन करत हन तो इमें प्रमुख रूप ले बात आते जल प्रबंधन के, तो डॉक्टर साहब ये बताते हो कि जैसे अपन जल है ओला कतेक दिन में बदलत रहना चाहिए?
0: जल का बराबर अगर आप बदली करेंगे तो आपका जो है पंप लगाने का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि आप तालाब का साइज बड़ा रखिए। तालाब का आकार अगर बड़ा रहेगा तो आपको जल के निकास या जल के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर तालाब बहुत छोटा है और आपने मछली बहुत डाल दिया है तो आपको जल का निकास या जल का परिवर्तन करना 3-3 महीना में बहुत ही उपयोगी माना जाता है। एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप बड़े तालाब में मछली का पालन करें और तालाब में से मछली का जल का आदान प्रदान और जल का निकास जो है तभी करें जब मछली असहज महसूस करे। लेकिन बड़े तालाब में इसका जल का आदान प्रदान करना गर्मी के मौसम में थोड़ा उपयोगी होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ जाता है तो आप जल का 10 से 20% जल का आदान प्रदान नए जल से के साथ कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये सुनील मिलते कि त्रिस्तरीय मछली पालन, तो ये त्रिस्तरीय मछली पालन का है और एकर ले हमारे किसान संगी मतलब का लाभ मिल सकते हैं?
0: त्रिस्तरीय मछली पालन को हम लोग मिश्रित जल कृषि भी कहते हैं और इसे इंग्लिश भाषा में हम लोग कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं, कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं। और इसमें मूल रूप से कतला रोहू मृगाल को मिक्स करके एक साथ पालन किया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य होता है कि आपके तालाब में ऊपरी सतह पे, मध्य सतह पे और तल के सतह पे जो भी खाद्य पदार्थ अवेलेबल है उससे उस खाद्य पदार्थ का मूल रूप से उपयोग करना और अधिक रूप से उपयोग करना, जिससे आपके मछली का जो विकास है वो अच्छा हो और अंत में आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। इसीलिए इस मिश्रित जल कृषि या 3 तलीय जल कृषि का उपयोग जो आज के जग में बहुत ही प्रचलित हो रहा है।
1: डॉक्टर साहब, कि जैसे अपन 3 स्तरीय मछली पालन करत हन तो का एकर तीनों के आहार जो है अलग अलग होते कि एक ही प्रकार के आहार में तीनों थे?
0: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम तीनों के लिए एक ही आहार का उपयोग कर सकते हैं जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा 25 से 28% होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि कुछ मछलियाँ सतह पे खाती हैं, कुछ मछलियाँ नीचे बैठ खाती हैं, तो इसमें अगर आप मिक्स टाइप का फीड जो खाद्य है जैसे कि फ्लोटिंग और सिंकिंग, जो डूबने वाला खाद्य पदार्थ और जो ऊपर सतह पे तैरता है उस तरह के खाद्य पदार्थ को मिला करके डालेंगे तो मछलियों का विकास बहुत ही अच्छा होगा।
1: अब ये बताते हो कि जैसे अपन मछली पालन करत हैं कतको बेरा किसान संगी मन ये नजर आते थे कि मछली अभी छोटे छे ऐसे कह के, तो कैसे पता चले कि मछली है खाए के लिए या बेचे के लिए हो गए ऐसे करके?
0: मछली पालन का एक समय सीमा होता है। अगर आप मछली पालन ठंड के मौसम में कर रहे हैं तो ठंड के मौसम में देखेंगे कि आपने 12-13 महीना कल्चर कर दिया, आपने स्टॉकिंग किया था कब, नवंबर में, जो कि ठंड का स्टार्टिंग होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हमारे यहाँ ठंड

0: रहती है। ये तो 3-4 महीना तो ऐसे निकल गए, और हमने क्या किया, उस 4 महीना को भी उसमें जोड़ दिया, तो 6 महीना इधर 4 महीना इधर, तो 10 महीना। तो आपको लग, अरे हमने तो 10 महीना पालन किया लेकिन मछली का कुछ आकार बढ़ा नहीं। तो ये एक मूलभूत प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं आपको एक सहज उपाय बताता हूँ कि आप मछली का जब भी तालाब में डालें वो मार्च के बाद डालें, या अप्रैल मई में जब आपको बीज उपलब्ध हो तब आप स्टॉकिंग करें, और कम से कम आप 8 से 12 महीना का पालन करें, जिससे कि जिसके बाद आपको 700 से ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम तक की मछली आपको मिल जाएगी।
1: डॉक्टर साहब ये बताते हो कि जैसे अपन मछली पालन करत हन, चाहे मछली पालन के बात हो मुर्गी पालन के बात हो, तो हमें रोग रही तो लगते हैं, तो मछली में कौन कौन प्रकार से रोग प्रमुख रूप से लगते हैं और एक निदान करे बर का करना चाहिए ये बताते।
0: मछली में मूल रोग जो है किसान भाइयों, इसमें एक जिसको हम बोलते हैं अर्गुलस, अपनी भाषा में वैज्ञानिक भाषा में इसको अर्गुलस बोलते हैं, और ऐसे हमारे ग्रामीण भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं मछली में कोई कीड़ा लग गया या पैरासाइट लग गया। तो वो कीड़ा जो है मूल रूप से मछली के पूरे स्किन पे या उसके गलफड़ा में लग जाके चिपक जाता है। तो वो जब कीड़ा चिपक जाता है तो मछली को खाने में, मछली को सांस लेने में ये सब प्रॉब्लम होता है, तो इससे मछली का विकास नहीं होता और मछली लास्ट में मर भी जाती है। जब मछली खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी, और ये तो एक प्रॉब्लम है। और दूसरी बड़ी समस्या मछली में ये होता है, जब आपके पानी का गुणवत्ता अच्छा नहीं रहेगा, उस दूषित परिवेश में मछली रह करके मछली के शरीर के ऊपर कुछ जीवाणुओं का इन्फेक्शन होता है, जैसे कि एरोमोनाज है। एरोमोनाज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पूरे भारतवर्ष में। उससे मछली का जो स्किन का जो कलर है, जो स्किन का जो रंग है, वो थोड़ा थोड़ा लाल हो जाता है। जब आप उल्टा के देखेंगे मछली को, उसके पेट की तरफ से वो लाल रहेगा, और मछली कुछ दिन के बाद खाना बंद कर देती है, उसके बाद मर जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इसका निदान कैसे करेंगे? इसके निदान के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप पानी के पीएच को बार बार चेक करें, और पीएच जैसे ही आपको लगे कि ये 7 के नीचे जा रहा है, तो आप उसमें चूना का उपयोग करें, जो कि 250 किलो से 300 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप अप्लाई कर सकते हैं चूना का। और इसके अलावा आप पोटासियम परमैंगनेट जो कि हम यूज़ करते हैं तालाब में, उसका 1 ppm 2 ppm आप मछली को एक तरफ जमा कर लें जाल में, और उसमें 1 से 2 ppm पोटासियम परमैंगनेट का छिड़काव करके फिर मछली को पुनः उस तालाब में छोड़ दें। इससे भी आपके आप अपने मछली को रोगों से मुक्त कर सकते हैं या बचा सकते हैं।
1: का शासन की योजना चलत है और एक लाभ हमर किसान संगी मन कैसे ले सकते हैं?
0: अभी जो हमारे पूरे भारतवर्ष में और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सब ने मिलजुल करके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसको हम लोग छोटे रूप में PMSSY बोलते हैं, उसके बाद जो हमारे राज्य के कृषि एवं मत्स्य विभाग हैं, वो भी हम सारे किसानों को सहयोग करते हैं टेक्निकल रूप में, वो ट्रेनिंग दे करके कुछ सब्सिडी भी देते हैं कि आपको फ्री में कुछ सीड मिलता है, जो कि हमारी राज्य सरकार देती है। और PMSSY जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसके द्वारा भी बहुत सारे सब्सिडियों का व्यवस्था किया गया है, जिससे कि हम लाभ ले सकते हैं। उसमें हमें कम कीमत पर मछली का सीड, मछली का खाना और मछली का दवाई भी मिलता है, जिससे आप उसे लेकर के आप उसका सहज लाभ उठा सकते।
1: जावत हमर किसान संगी मल्ला मछली पालन के संबंध में औ का संदेश देना चाहत हो डॉक्टर साहब आप?
0: हम छत्तीसगढ़ के सारे किसान भाई एवं बहनों को बोलना चाहते हैं कि आप कृषि तो करते ही हैं, धान तो यहाँ का मुख्य है, आप मुर्गी पालन भी करते होंगे, गाय भी रखते होंगे, भैंस भी रखते होंगे, आप मछली भी रखिए। इससे क्या होगा, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मछली के साथ साथ गाय बैल मुर्गी और बतख का पालन, इस पर भी ध्यान दें। सरकार आपके साथ है, वैज्ञानिक आपके साथ हैं। धन्यवाद।
1: तो डॉक्टर प्रेम कुमार, प्रधान वैज्ञानिक केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई, आप हमर बीच आयो, हमर किसान संगी मल्ला मछली पालन ने जुड़े अतिक सुघर जानकारी दे, ये खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: क्रम आज के सलाह में अभी सुनत रहन मछली पालन एवं प्रबंधन, अब ये विषय में जानकारी देवत रही थे डॉक्टर प्रेम कुमार, प्रधान वैज्ञानिक केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई।
2: लालजी भाई, हमार संगवारी मन बड़ ध्यान लगा के कहूँ हमार आज के सलाह क्रम ला सुने हो ही, तो संगवारी हो जाओ तैयार और कागज कलम लेके लिख डरो हमार आज के प्रश्न ला। हमार आज के

0: निधि, अभी सुनत रहन पंचराम मिर्झा और कुलवंतीन बाई के स्वर में सुघर अकन गीत।
1: लालजी भाई देख गोड बात करत बेरा कब पहागे पता नहीं चली, अब होगे जाए के बेरा। जाए के पहली संगवारी मन ला बता देथन काली के कार्यक्रम। काली संजय चौपाल मा गोड बात संग किसानवाणी क्रम मा सुनो आप मन अपन पसंदीदा क्रम फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी। विषय हो ही मानसून के पूर्व में पशुओं में होने वाली बीमारियों की पहचान, बचाव व उपचार तथा टीकाकरण का महत्व। विशेषज्ञ रही डॉक्टर के एल राम, अतिरिक्त उपसंचालक शासकीय पशु चिकित्सालय मांढर। संगमा मनोरंजन वर्ग हुई गीत संगीत। अब चलन आज के कार्यक्रम ले अपन संगी निधि शर्मा
0: लाल जी साहूला
1: देव विदा राम।

0: मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये था फिल्म फिर कब मिलोगी का गीत। मजरू के बोल थे, आर टी बर्मन का संगीत।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: घर आंगन, ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गीत का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है और फिल्म का नाम है आया सावन झुमके।

आया सावन जोम के इस फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं हमारी इसी सभा में रात 9:15 पर। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सीमा दत्ता। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं ये रचना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर

0: 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं सीमा तत्ता।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 8:30 होने को है। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन का मुकाबला काबो वर्ड्रे से होगा। स्वीडन ने ट्यूनिशिया को और जर्मनी ने कुरासाओ को मात दी। जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला ड्रॉ। महिला हॉकी नेशंस कप में भारत ने किया जीत के साथ आगाज। रोमांचक मुकाबले में अमेरिका को 3-2 से हराया। ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना और एशियन चैंपियन प्रीति पवार ग्रां प्री उस्तीनाद लाबेन प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करेंगी। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराकर शानदार अंदाज में प्रतियोगिता की शुरुआत की।

तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और काबो वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। स्वीडन ने ट्यूनिशिया को और जर्मनी ने कुरासाओ को मात दी। सुनते हैं इन मुकाबलों पर खास रिपोर्ट।

मैच की शुरुआत में नीदरलैंड्स की टीम जापान के डिफेंस पर हावी नजर आई। नीदरलैंड्स की ओर से एक के बाद एक अटैक किए गए, लेकिन जापान के गोलकीपर जियोन सुजुकी ने कई शानदार बचाव किए। मैच के 50वें मिनट में रयान ग्रोवेनबर्ग की फ्री किक पर नीदरलैंड के कप्तान वर्जिल वैन डाइक ने बेहतरीन हेडर लगाकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। वहीं मुकाबले के 57वें मिनट में नकामुरा ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। 64वें मिनट में समरविल ने शानदार कर्लिंग शॉट लगाते हुए जापान के गोलकीपर को छकाया और नीदरलैंड्स को मुकाबले में 2-1 से आगे कर

मैच में कोई और गोल नहीं लग सका और दोनों टीमों को एक एक अंक से संतोष करना पड़ा। वहीं मोंटेसरी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्वीडन की ओर से यासीन अयारी, अलेक्जेंडर इसाक और विक्टर योरकेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और टीम की बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाई। पहले हाफ में ही स्वीडन की ओर से यासीन अंसारी ने पहला गोल करते हुए 1-0 की बढ़त हासिल की। इसके कुछ समय बाद अलेक्जेंडर इसाक ने स्कोर 2-0 कर दिया। हालांकि ट्यूनिशिया ने भी वापसी की कोशिश की और उमर रेकिक ने हैनिबल मेजबरी के क्रॉस पर हेडर लगाकर अपनी टीम के लिए पहला गोल करते हुए स्कोर को 2-1 कर दिया। इसके बाद स्वीडन ने जबरदस्त खेल दिखाया और मुकाबले को एक तरफा कर दिया। योरकेस ने आसान फिनिश करते हुए स्कोर 3-1 कर दिया। इसके बाद मैटियास स्वानबर्ग ने स्वीडन के लिए चौथा गोल और यासीन अयारी ने आखिरी गोल करके टीम को 5-1 से जीत दिलाई। जबकि चार बार की विश्व चैंपियन जर्मनी ने फीफा विश्व कप का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया है। जर्मनी ने ई ग्रुप के पहले मैच में कुरासाओ के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 7-1 से जीत दर्ज की। जर्मनी की ओर से फेलिक्स नेमचा, निको, काई हेवर्ट्स, जमाल मुसियाला, नेथेनियल ब्राउन और डेनिस उन्दाव ने गोल किए। कुरासाओ के लिए लिवानो कोमेंसिया ने शानदार गोल कर टीम के लिए इतिहास रच दिया। यह इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि कुरासाओ क्षेत्र और आबादी दोनों में ही अब तक सबसे छोटा देश है जिसने विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। एक अन्य मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।

0: कर लेते हैं हॉकी के मैदान की ओर, जहां भारत ने शानदार अंदाज में प्रतियोगिता का आगाज किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप का आगाज जीत के साथ किया। भारत ने मैच में 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए पुल ए के मुकाबले में अमरीका को 3-2 से हराया। सुनते हैं रोमांचक मुकाबले पर एक रिपोर्ट।
1: हॉकी नेशंस कप में भारतीय टीम की ओर से मुकाबले में दीपिका ने 2, नवनीत कौर ने 1 गोल किया। दीपिका को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अमेरिका ने मैच की शानदार शुरुआत की और एशले सेसा ने 4th मिनट में फील्ड गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। अमेरिका ने महज 3 मिनट बाद ही अपनी बढ़त 2 गुनी कर ली। मेडलिन जिमर ने 7th मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत पर शुरुआती दबाव बना दिया। 2 गोल से पीछे चल रही भारतीय टीम ने धीरे धीरे अटैक में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। दूसरे क्वार्टर में उनकी कोशिशें रंग लाई जब ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट दीपिका ने 17वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को सफलतापूर्वक गोल में बदलकर स्कोर कम किया और भारत को मैच में वापस ला दिया। मोमेंटम भारत के पक्ष में जाता रहा और क्वार्टर के बीच में उन्हें एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। दीपिका ने 24वें मिनट में फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए एक और पेनल्टी कॉर्नर को सफलतापूर्वक गोल में बदलकर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। इसके बाद भारत ने दबाव कायम रखा और हाफ टाइम से पहले शानदार वापसी की। मैच के 28वें मिनट में नवनीत कौर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए भारत को पहली बार मुकाबले में बढ़त दिलाई, जो मैच के अंत तक कायम रही। वहीं दूसरे हाफ में भारत और अमेरिका ने गोल की तलाश में जोरदार मुकाबला किया। दोनों टीमों को मैच के दौरान 6-6 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन बाकी 2 क्वार्टर में किसी भी डिफेंस ने कोई और गोल होने नहीं दिया। भारत ने आखिरी स्टेज में अपनी बढ़त बनाए रखी और जीत के साथ 3 पॉइंट्स हासिल किए। इस जीत के बाद भारत 3 पॉइंट्स के साथ पूल ए में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत का अब अगला मुकाबला 16 जून को जापान से होगा, जो पूल ए में इस समय पहले स्थान पर मौजूद है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैस्ट।
0: और अब बात बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ग्रांड प्री उस्तिनाद लाबिम प्रतियोगिता के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। ये प्रतियोगिता चेक गणराज्य में 17 से 21 जून के बीच खेली जाएगी। सुनते हैं एक रिपोर्ट।

0: से टीम में ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन और मौजूदा एशियन चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट प्रीति पवार जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। भारत 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में तेजी ला रहा है। भारतीय दल में देश के कई प्रमुख बॉक्सर शामिल हैं, जिनमें कॉमनवेल्थ गेम्स के ज्यादातर वेट कैटेगरी के टॉप रैंक वाले एथलीट्स भी हैं। ये प्रतियोगिता आगामी बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स की तैयारियों और कॉम्बिनेशन को परखने तथा यूरोप के प्रतिस्पर्धी माहौल में मजबूत विरोधियों के खिलाफ खेलने का एक अहम मौका है। ग्रैंड प्री उस्ती नाद लाबेम यूरोप के सबसे पुराने बॉक्सिंग इवेंट्स में से एक है, जो 5 दशकों से ज्यादा समय से ग्लोबल कैलेंडर का हिस्सा रहा है। इसे वर्ल्ड बॉक्सिंग के नियमों के तहत यूरोपियन बॉक्सिंग गोल्ड टूर्नामेंट के तौर पर आयोजित किया जाएगा। पुरुषों और महिलाओं के 10-10 वेट कैटेगरी में होने वाला ये इवेंट भारतीय बॉक्सरों के लिए एक अहम पैमाना साबित होगा। इस प्रतियोगिता में लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में और प्रीति पवार 54 किलोग्राम महिला टीम की अगुवाई करेंगी, जिसमें साक्षी 51 किलोग्राम, प्रिया 60 किलोग्राम और परवीन 65 किलोग्राम वर्ग में शामिल हैं। पुरुष टीम में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम वर्ग में, सचिन सिवाज 60, आदित्य प्रताप 65, सुमित 70, अंकुश 80, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम वर्ग और नरेंद्र 90 से अधिक किलोग्राम वर्ग में शामिल हैं। स्पोर्ट्स कैन के लिए शक्ति सिंह।
1: भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने आज घोषणा की कि वे 19 जून को होने वाली दोहा डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: दोहा डायमंड लीग में भाला फेंक की प्रविष्टियों में नीरज चोपड़ा का नाम शामिल है, जबकि 12 जून को जारी सूची में उनका नाम नहीं था। उन्होंने पिछले साल इसी टूर्नामेंट में 90 मीटर का आंकड़ा पार किया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 चैंपियन और पेरिस ओलंपिक 2024 के रजत पदक विजेता 28 वर्षीय चोपड़ा ने 2025 विश्व चैंपियनशिप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं लिया है। आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए रविवार को घोषित भारतीय एथलेटिक्स टीम में भी चोपड़ा का नाम सशर्त शामिल किया गया है। उन्हें इसके लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का 82.61 मीटर का क्वालिफिकेशन मार्क हासिल करना होगा। अगर वह ग्लासगो में अगले महीने होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेते हैं तो भारत के 3 भाला फेंक खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। रोहित यादव और यशवीर भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 9 के जरिए क्वालिफाई कर चुके हैं। दोहा डायमंड लीग में मौजूदा विश्व चैंपियन त्रिनिदाद और टोबैगो के केशॉन वालकोट और हाल ही में रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का थ्रो फेंकने वाले श्रीलंका के रोमेश तरंगा पथिरागे भाग लेंगे। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात क्रिकेट की। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को शानदार अंदाज में प्रतियोगिता की शुरुआत की। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। आइए सुनते हैं इस महामुकाबले पर ये रिपोर्ट।
3: बर्मिंघम के एच बेस्टन में भारतीय महिला टीम ने 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए। टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारत की शुरुआत निराशाजनक रही। भारतीय टीम को महज 18 के स्कोर तक 2 झटके लग गए थे। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ 63 गेंद में 91 रन की साझेदारी करते हुए भारत को मुश्किल परिस्थिति से निकाला। मंधाना 44 गेंद में 68 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि हरमनप्रीत कौर ने 35 गेंद में 36 रन की सधी हुई पारी खेली। दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष ने 21 गेंद में 45 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। दीप्ति ने नाबाद 12 और ऋचा घोष ने ताबड़तोड़ 34 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेट लिए। 171 रन के लक्ष्य के जवाब में मुनीबा अली और गुल फिरोजा की सलामी जोड़ी ने पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद टीम निरंतर अंतराल पर विकेट खोती रही और सिर्फ 106 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट निकाले, जबकि श्री चरणी ने 3 विकेट लिए। 1 विकेट शेफाली शर्मा ने अपने नाम किया। मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा ने कहा कि उन्होंने मुकाबले में प्रोसेस पर ध्यान दिया।
4: आई थिंक जब यंग दीप्ति से अभी सीनियर दीप्ति में जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक प्रेजर कंडीशंस एंड आईसीसी टूर्नामेंट्स। जहां से मैंने खत्म किया था आई थिंक वहां से ही शुरू किया है। सो अच्छा लग रहा है, बस कि अपने जो प्रोसेस है उस पे फोकस कर रही हूँ। वही चीज जो प्रैक्टिस में करती हूँ वही मैच में अप्लाई कर रही हूँ। दोस थिंग्स हेल्प मी। और बस यही है कि इससे आगे जाना है, रुकना नहीं है और डे बाय डे अच्छा करना है।
3: विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने कहा कि मैच में अहम साझेदारी के लिए रनिंग बिटवीन द विकेट बेहद जरूरी है।

0: पहला बॉल तब भी मेरा पता चला कि आज मेरा दिन है, क्योंकि जब कट और ऐसा आ जाता है एक अच्छा शॉट तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट मिलता है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स वो सब में हम ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर चौका भी नहीं आ रहा, छक्का नहीं आ रहा है तो हम कैसे भागे, हम जितना पुश कर सकते हैं। आई थिंक वो हमें हेल्प किया गेम में रहने के लिए। जैसे 19 और 20 ओवर जैसे हमने बात किया कि अभी ऑल आउट जाना है, क्योंकि जितना स्कोर आएगा रन बोर्ड में उतना हमारे लिए अच्छा है, टीम के लिए, बॉलर्स के लिए हेल्प होगा।
1: इस जीत के साथ ही भारत ने महिला T20 विश्व कप में रनों के अंतर से अपनी 5वीं सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। भारत 17 जून को लीड्स में नीदरलैंड से खेलेगा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
2: उधर दाम्बुला में ट्राई नेशन एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज में आज रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को हराया। इस मैच का फैसला सुपर ओवर के जरिए किया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम 265 रन पर सिमट गई। सूर्यांश ने सर्वाधिक 72 रन की पारी खेली, लक्ष्य का पीछा करने उतरी। श्रीलंका की टीम निर्धारित ओवर में 9 विकेट पर 265 रन ही बना सकी। सदीरा समरविक्रमा ने सर्वाधिक 93 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने उतरे श्रीलंका ने 16 रन बनाए, जवाब में भारत 9 रन ही बना सकी। और अब बात एथलेटिक्स की। त्रिवेंद्रम में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में कल भारत की पूजा ने महिलाओं के हाई जंप इवेंट में अपना दबदबा बनाए रखा। 19 वर्षीय पूजा ने 1.81 मीटर की ऊंचाई के साथ बेहतरीन जीत हासिल की। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी

0: जारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टर्बाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चलेगी।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।

0: एलएनजी कैरियर दिशा
1: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
2: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and its Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
3: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
4: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में स्वामी। इस फिल्म का गीत संगीत राजेश रोशन का है, गीतकार है अमित खन्ना।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
3: धन्यवाद।
2: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
3: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं। 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूँ और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूँ कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
2: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
3: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है,

0: खास करके जो गरीब व्यक्ति है उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। पीएमएवाई प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले पीएमएवाई 1 था, पीएमएवाई 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। तभी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं यहाँ ड्यूसिव के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो टीओडी बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए और उसमें कम से कम जो ट्रैवल करने का मोड है उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रैवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे से उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें टीओडी पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही हैं और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे मोबाइल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है इसको हम पूरा करें।
1: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
0: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3.25 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहाँ चीजें खास करके जमीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है, तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी, उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसी

एजेंसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया। RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है।

0: लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदि पहुंच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं एनसीआर के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं। वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है। अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती मध्यम वर्ग।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की और इतनी सारी चीज, मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझें इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे भी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हमें व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी 1-1.5 लाख की आबादी थी। ये 80s की बात है, आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है। और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजना चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टियर 2 टियर 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना है हमको, और इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को मैंने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी है कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के, छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं।
1: जी,
0: 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती हैं मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए।

0: ये बैंकों से दिलवाएंगे और उसको कहेंगे एक साल में इसको वापस करना है, यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे और उसके जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि एक साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया कि वो तीसरी बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 पहले ले उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट। 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1.5 करोड़ लोन्स यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1.5 करोड़ लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कम्प्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझें?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी महुआ की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में, तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही है और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है, रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते एनवायरनमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर

0: होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहाँ मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में जी मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई। हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया, और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई। और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं, लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है। घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती हैं तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में दे करके उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिला के 78,000 भारत सरकार देती है। टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाएगी,
1: इनकम होने लगेगी।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो, वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत, बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं
1: जी। पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था, और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूँ, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है, और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है, और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है, और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेके चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है, और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूँ कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति, और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहले आपको सुनवा रहे हैं मिस मैरी इस फिल्म का गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, राजेंद्र किशन के बोल हैं हेमंत कुमार का संगीत, और इस गीत के लिए फरमाइश आप सभी श्रोता साथियों की। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, कोदवा साजा बेमितरा से राम स्वरूप गुप्ता, एच डी गुप्ता, रामेश्वर नगर से प्रियेश गुप्ता, हांडीखेड़ा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, चरोदा से प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर, कुलारीकोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू मोहनीश अनुराग कश्यप, अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा अनस, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, अन्नपूर्णा वर्मा, पिपरिया कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, किशन साहू, कुमारी साहू, राजनांदगांव से योगेश सरवा, आशा सरवा, नीरज, नीलेश और अंजलि, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास रानी मानिकपुरी, बलोदा से दिलहरन गौतम, अंजलि, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं मिस मैरी इस फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पतंग का गीत, बोल राजेंद्र किशन की, संगीत चित्रगुप्त का है। फरमाइश आप सभी श्रोता साथियों की। तखत पुरसी मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू, मेघा पारसी, रामकुशल पटेल, संतोषी, दीपांशु, दिव्या पटेल, सावतपुर से ऋषि और रितेश सेन, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत टेकू और विनय कुमार ठाकुर, इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश कार्तिक, चिरमिरी कुरासिया से इंद्रभान, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, कोहका भिलाई से प्रताप पांडे, रेखा पांडे, खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, रुद्र वर्मा, राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, पूजा प्रेम, काकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, बेमित्रा से राज और सारिका वैष्णव। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पतंग का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ किशोर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत और फरमाइश आप सभी श्रोता साथियों की। अहिवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति, छाया बंछोर, सहसपुर लोहारा कवर्धा से गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा पुष्पराज, हजदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, पायल साहू, भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन, कोलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पूर्णेंद्र, साहिल चंद्राकर, गंडे टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक कुमार, जयश्री देवांगन, टचड़ी से कमलकांत मरावी, नेहा, पुष्पराज ऋषभ, दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन और वाणी वर्मा, बाटापरा से नारायण यदु, पुनिया, राकेश और आरती यदु। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

पुरानी फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफ़र आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है परिवार। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने और फरमाइश आप सभी श्रोता साथियों की। चार मीनार चौक गंडई से दरिया नमल अनिता राजेश मुकेश मोटवानी, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बेबी अनिष्का तन्मय गजभिये, बाटापरा से अमृता यादव पार्वती ईश्वरी लक्ष्मी यादव, महासमुंद से दीपक लक्ष्मीदास, लोरमी से रामकिशन साहू लोकेश साहू छोटकू सतीबाई सत्यम साहू, महासमुंद से अदालत दास वैष्णव मानस सतीश ऋचा वैष्णव, बेरडी से राजेश सोनी कंचन गायत्री डोमने वैष्णवी, बगबुड़वा पथरिया से नरेनेताम कुसुम प्रोणिका, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत सीमा शारदा, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, खैरागढ़ से देवेंद्र कांति गौरी सुधीर, कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवांगन प्रभा देवी, अरमरी खुर्द बटरेल से चुरामन लाल वार्डे जैनी वार्डे विवेक कुमार वार्डे नेहा वार्डे, अडान नानघाट से माखन वर्मा चांदनी राहुल भूपेश दीपेश वर्मा, बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन मधु हिमांशु अंकित देवांगन, रायपुर से ताम्रध्वज साहू। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं परिवार इस फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं एक बोल तो माली इस फिल्म का गीत। प्रेम धवन के बोल हैं संगीत रवि का और फरमाइश आप सभी श्रोता साथियों की। बाटापारा से गन्नू लाल रचक के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। महामायापारा दरचुरा से फिरंता साहू, दलोरिन कामेश्वरी, प्रीतम कुमार। शीतला नगर दुर्ग से अर्पा पैरी, पार्वती राधा। अमरपुर पिंडरा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव। पंडरिया से शिवा यादव, राज चिंटू, तरुण यादव। शीतला नगर दुर्ग से शिवन चंद्राकर, भगवान चंद्राकर। दुराबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन कुमार साहू। दरचुरा से ददुआ साहू, भोरी साहू, रेखा, मोतीलाल।

पंतीनगर भाटापरा से रमजान खान, सिकंदर अशरफ खान, अयाज अल्फेज खान, विलायसी विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान, धमतरी से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा शुभम सेजल साहू, बरसोली से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास जयदास देवेश, सरगांव से सिंगा से सविता जैन, प्रदीप जैन, जयमा रेडियो श्रोता संघ आतापार से धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा साहू, बिंदेश्वरी और नागेश्वरी, कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि खुशी उज्जल वर्मा, धरसेवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, भाटापरा से दान से रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, रायपुर से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा, दिनेश सेन, रायपुर से राजेश अंबादी, शशिकला, पूजा अंबादी, भाटापरा से चौवाराम वर्मा, दुलारी मुकेश, दुर्गा वर्मा, रुआबंदा शनिचरी बाजार, भिलाई से सुशील जैन, कल्पना सेया और सौरभ जैन। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

और इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुरों का सफर अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग सोहनी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग सोहनी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 11 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।